स्वस्थ वातावरण बनाए रखने से हमें अच्छा स्वास्थ्य और रोग मुक्त रहने में मदद मिलती है। ये एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली की ओर ले जाता है और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करता है। हमें अपने घरों, सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को साफ और कूड़े से मुक्त रखना चाहिए। हमें कचरे की जमा होने और बीमारियों को पनपने से बचाना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर दैनिक जीवन में स्वच्छता को संवारना और बनाए रखना आवश्यक है। स्वच्छता एक स्वस्थ आदत है जो हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। हमें पृथ्वी पर हमेशा के लिए जीवन अस्तित्व की संभावना बनाने के लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, भोजन, भूमि आदि को अपने शरीर की स्वच्छता के साथ बनाए रखना चाहिए। स्वच्छता में मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक हर तरह से स्वस्थ बनाती है। आमतौर पर हम सभी अपने घरों में ये ध्यान देते हैं कि हमारी दादी और माँ पूजा से पहले साफ सफाई को लेकर बहुत सख्त हैं। ये दूसरी बात नहीं है, वे सिर्फ स्वच्छता को अपनी आदत बनाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वे गलत तरीके से चलाते हैं क्योंकि वे कभी भी हमें स्वच्छता को लाभों और उद्देश्यों का वर्णन नहीं करते हैं कि हमें स्वच्छता का पालन करने में समस्या क्यों होती है। प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को स्वच्छता के लाभ, उद्देश्य, आवश्यकता आदि के बारे में तार्किक रूप से वर्णन और चर्चा करनी चाहिए। उन्हें हमें बताना होगा कि भोजन और पानी की तरह स्वच्छता हमारे जीवन की पहली और महत्वपूर्ण चीज है। स्वच्छता हमारे शरीर, मन, पोशाक, घर, परिवेश और अन्य कार्य क्षेत्रों को साफ और स्वच्छ रखने का कार्य है। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए शरीर की सफाई बहुत आवश्यक है। सामाजिक और बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए आसपास के क्षेत्रों और पर्यावरण की स्वच्छता बहुत आवश्यक है। हमें अपनी आदतों में स्वच्छता लानी चाहिए और हर जगह से गंदगी को हमेशा के लिए हटा देना चाहिए, क्योंकि गंदगी वह माँ है जो विभिन्न बीमारियों को जन्म देती है। आसपास के इलाकों या घर में गंदी चीज़ों, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस पैदा करती हैं। गंदी आदतें रखने वाले लोग खतरनाक और घातक बीमारियों को फैलने का कारण बनते हैं। स्वच्छता आत्मविश्वास स्तर और आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरों के सम्मान में भी सुधार करती है। ये एक अच्छी आदत है जो हमें हमेशा खुश रखती है। इससे हमें समाज में बहुत गर्व महसूस होता है। हमारी स्वास्थ्य जीवन शैली और जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए स्वच्छता बहुत आवश्यक है। ये एक व्यक्ति को लोकप्रिय बनाने में एक महान भूमिका निभाता है। हम सभी को अपने बचपन से स्वच्छ आदतों को प्राप्त करना चाहिए और जीवन भर आगे बढ़ना चाहिए। गंदगी नैतिक बुराइयां को जन्म देती हैं, लेकिन सफाई नैतिक परिवर्तनता को जन्म देती है। हमें अपने दैनिक जीवन के कचरे के बारे में ध्यान रखना चाहिए और उचित निपटन के लिए केवल कूड़ेदान में ही रखना चाहिए और संक्रमण को घर या आसपास फैलने से रोकना चाहिए। हालांकि स्वच्छता केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं, ये हर घर, समाज, समुदाय और देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें इसके विविध पहलुओं को पूरी तरह से लाभान्वित करने के लिए समझना चाहिए। हम सभी को स्वच्छता शपथ लेनी चाहिए।

अभी आप दिचिन्यांगडुल से रोशनी सुन रहे थे। अजी आकाशवाणी इलेनिजुत संगत उछुजुत उर्तुन तंस्कर मा असुम चु सुप्तुन छदु कसा तंग अजी धीरे निमे डिग्रिम गुने स्कोर कुन संजेसला फुलेन।

0: Dagsang sirang ni tatpa nang sindi krim sanazat nga ji Akash wani lenijot sanga to chu chu rgya chadu kasata Akash wani delene samachar prabhat yang testing ne morning news sanazat
1: प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसी के सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक

0: कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप अंदाज गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन की चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉ MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमेक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा, टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है, पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है, इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है, तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है, कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर बीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुँच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। बीजेपी सेंट्रल ऑब्जर्वर फॉर वेस्ट बंगाल अमित शाह टू मीट न्यूली इलेक्टेड पार्टी एमएलएस इन कोलकाता टू इलेक्ट लेजिस्लेटिव लीडर टुडे। Deadlock continues in Tamil Nadu over government formation as MLAs of VCK, CPI and CPIM to meet on lending support. President of Vietnam Tho Lam emphasizes India-Vietnam role in global supply chain at Business Forum in Mumbai. Commerce Minister Piyush Goyal reviews initiatives to strengthen India's position in global agriculture landscape. Saudi Arabia suspends US military access to its bases and airspace. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at Ikana Stadium. BJP Central Observer for West Bengal and Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
9: After a sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday, the Pochisha Boishakh, at the Brigade Parade Ground. Preparations for the stage and security arrangements at Brigade began on Wednesday itself. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central ministers may attend the ceremony. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. On Friday, a meeting of the newly elected BJP MLAs will be held at Bishwa Bangla Convention Centre in New Town, where the leader of the legislative party will be formally elected. Amit Shah will be present as the central observer. Since the oath-taking ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, special emphasis is also being given to cultural performances. The BJP is planning to showcase Bengali culture through Rabindra Sangeet and other cultural presentations. Shondipan Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
8: In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, talks have been held to reach the magic number of 118 to prove the majority. The DMK and the AIADMK held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappatti Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party during the meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK. We have more from a correspondent.
10: The situation in the state has taken interesting political outcome with the AIADMK and the DMK legislative party meeting held yesterday. Both of the parties have commented on the governor's decision on proving the majority. DMK spokesperson TKS Ilangovan has said that it is the duty of the single largest party to prove its majority and added that DMK chief MK Stalin does not want any constitutional crisis. It is to be noted that Puducherry AIADMK Secretary A. Anbaragan, who met the media after the legislative party meeting, had said that the power to decide has been given to the General Secretary of the party. He hailed the decision of the governor on the issue of majority and said that there will be unexpected decisions in the prevailing political uncertainty. He also informed the media that their leader felt sad about Stalin's loss in this election. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
8: President of Vietnam, Tho Lam, has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Speaking on the occasion, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis asserted that entrepreneurs, investors and professionals from the technology and manufacturing sectors in countries like India and Vietnam will shape the future of Asia.
4: India and Vietnam offer something important to the world: trusted partnership, stable governance, economic dynamism and long-term strategic confidence. The future of Asia will be built by entrepreneurs, innovators, investors, technology leaders, manufacturers and young people from countries like India and Vietnam working together.
8: After concluding his visit to India, the Vietnamese president arrived in Sri Lanka last night on a two-day state visit aimed at deepening bilateral ties and boosting trade and investment cooperation. The visit, undertaken at the invitation of the Sri Lankan president Anuradha Kumaradesanayake, coincides with the 55th anniversary of diplomatic relations between the two countries and marks the first visit by a Vietnamese president to Sri Lanka in 15 years. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discuss initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agricultural landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector.

अब दिल्ली दूर नहीं ई फिल्मिलु कसता आशा भोसले गीता दत्तं ठोपगुन्ने सनजत लूर सुमकन शैलेंद्र यांगलु यांग सिकन दत्ताराम।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कसता लता मंगेशकर तंग चित्तकाल निस्कने आजाद फिल्म लो सनत लूर सुमकन राजेंद्र कृष्ण यंग लुयांग श्रीकन सी रामचंद्रा।

कसत बसंत बहार ई फिल्मलु लता मंगेशकर तंग आशा भोसले इसकने सनजत लूर सुमकन हसर जयपुरी यंगलु यांगस्टिकन शंकर जयकिशन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन होगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होनी है। वहीं केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर अपने निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष एमजे खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी बातचीत की गई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। वे मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू हुई तथा कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन से होती हुई आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रॉयल सीमा में आज गरज के साथ बारिश तथा तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The first BJP government in West Bengal will take oath tomorrow, the 25th of Boishak, at the Brigade Parade Ground. According to BJP sources, Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Nitin Gadkari, JP Nadda, BJP President Nitin Naveen and several other central leaders may attend the ceremony. Chief Ministers and Deputy Chief Ministers of various BJP and NDA ruled states are also being invited. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state, talks are being held to reach the magic number of 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party. President of Vietnam Tho Lam has emphasized that India and Vietnam together have a significant opportunity to play a pivotal role in the global supply chain in today's changing world order. Addressing the India-Vietnam Business Forum in Mumbai, Mr. Lam highlighted that the current global scenario is indeed a challenge but also an opportunity to elevate cooperation between India and Vietnam to a new level. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information in a social media post, Mr. Goyal said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. IndiGo Airline has announced that it will begin commercial flight services from Noida International Airport in Jewar from 15th of June. With this, IndiGo is set to become the airport's first launch carrier. IndiGo will gradually connect Noida International Airport with more than 16 cities across the country through direct flights. The Uttar Pradesh government has issued orders to operate all smart meters installed across the state in postpaid mode. Energy Minister Arvind Kumar Sharma stated that all smart meters installed under the RDSS scheme are being converted to the postpaid system with immediate effect. Under this arrangement, consumers will receive bills after electricity consumption. The bill for electricity consumed in May 2026 will be issued in June 2026 under the postpaid system. The Directorate General of Training, DGT, under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship will host a high-level industry consultation today at the National Skill Training Institute, Kanpur, Uttar Pradesh. The ministry said that the event marks a pivotal moment in India's pursuit of a globally competitive aerospace skills ecosystem. It will bring together more than 30 senior industry leaders, CEOs and policy experts under one roof to deliberate on the establishment of a National Centre of Excellence, NCOE. US President Donald Trump warned that the US will knock Iran a lot harder and more violently after US forces intercepted Iranian attacks on three American destroyers as they exited the Strait of Hormuz. In a social media post, Mr. Trump said three American destroyers passed safely through the Strait of Hormuz under Iranian attack. He claimed missiles and drones were fired at the ships but were destroyed by US defenses, causing heavy damage to Iranian forces. In IPL cricket, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi today. The match will begin at 7:30 p.m. Yesterday, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method in a rain hit match at Ikana Stadium in Lucknow. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier, put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. And that is the end of this news bulletin.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के निकट तीन अमेरिकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमेरिकी सेना की पहुंच पर रोक लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अबुधाबी में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से 12 और बच्चों की मौत। और नेपाल की संवैधानिक परिषद ने डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए नामित किया। समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट तीन अमेरिकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। अमेरिकी सेना ने इस हमले को नाकाम कर दिया। एक रिपोर्ट।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि तीनों अमेरिकी जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकल आए। अमेरिकी सेना ने इन जहाजों को निशाना बनाने वाली मिसाइलों को नष्ट कर दिया और ईरानी सेना को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका ने कहा है कि वो युद्ध आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन हर हाल में अपनी सेना की रक्षा के लिए तैयार है। वहीं ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि अमेरिका ने टकराव की शुरुआत की और ईरानी सेना ने केवल इसका जवाब दिया। अमेरिका और इसके अरब सहयोगियों के बीच तनाव के बाद ये हमला हुआ है। खबर है कि सऊदी अरब ने जबरन जल डमरू मध्य मार्ग खुलवाने के अमेरिकी प्रयास में सहयोग करने से इनकार कर दिया है। समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
3: उधर सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमेरिकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना प्रोजेक्ट फ्रीडम छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए कोई स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमरीकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्क लगाए जाने की घोषणा की थी। अमरीकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि 1-2 मत से इस टैरिफ को अवैध बताया। ये फैसला ट्रंप प्रशासन के लिए एक और कानूनी झटका है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रीम अल हाशिमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
5: विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। इस वर्ष जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और फरवरी में अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत यात्रा के दौरान लिए गए निर्णयों पर प्रगति का भी जायजा लिया गया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबुधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
3: विश्व दर्पण आकाशवाणी से प्रसारित किया जा रहा है। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में संविधान परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के नाम की सिफारिश की है। डॉक्टर शर्मा न्याय परिषद द्वारा भेजे गए 6 उम्मीदवारों में वरिष्ठता क्रम में चौथे स्थान पर हैं। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने की। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
6: नेपाल में पहले आमतौर पर मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश वरिष्ठता के आधार पर होती थी, लेकिन इस बार वरिष्ठता क्रम को छोड़कर डॉक्टर शर्मा का नाम आगे बढ़ाया गया है। नेपाल के संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 3 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुका हो वह मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। इस पद के लिए योग्य न्यायाधीशों में सपना प्रधान मल्ला, कुमार रेग्मी, हरि प्रसाद फोयाल, डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, डॉक्टर नाहकुल सुबेदी और तेल प्रसाद श्रेष्ठ शामिल थे। न्यायिक परिषद द्वारा अनुशंसित सभी 6 व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हैं और संविधान किसी की भी नियुक्ति पर रोक नहीं लगाता है। मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और आयु सीमा 65 वर्ष है। काठमांडू से श्वेता सिंह की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं पायल शर्मा।
3: रूस ने यूक्रेन के साथ जारी युद्ध में आज से 10 मई तक संघर्ष विराम की घोषणा की है। ये घोषणा द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ की विजय की 81वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में की गई है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सम्मेलन में कहा था कि रूस 9 मई के विजय दिवस परेड के दौरान मॉस्को के रेड स्क्वायर पर संभावित ड्रोन हमलों के डर से युद्ध रोक सकता है। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लैम कल रात 2 दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। एक रिपोर्ट।
7: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम की इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और व्यापार तथा निवेश सहयोग को बढ़ाना है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। ये पिछले 15 वर्षों में किसी वियतनामी राष्ट्रपति की पहली श्रीलंका यात्रा है। राष्ट्रपति तो लैम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, संसद को संबोधित करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। इससे पहले राष्ट्रपति तो लैम ने अपनी भारत यात्रा के दौरान मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कहा कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास महत्वपूर्ण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। श्री लैम ने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया।
3: बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार 6 बच्चों की मौत ढाका में और शेष की बारिसाल, खुलना, मेमन सिंह, राजशाही और सिलहट में हुई। महानिदेशालय ने बताया कि इनमें से 1 बच्चे में खसरे की पुष्टि हुई जबकि 11 बच्चों में खसरे जैसे लक्षण पाए गए। देश भर में 1238 बच्चों में खसरा जैसे संक्रमण के लक्षण हैं। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि क्रूज जहाज पर फैले हंता वायरस संक्रमण के 5 मामलों की पुष्टि हुई है जबकि 3 अन्य मामलों में संक्रमण का संदेह है। WHO के अनुसार स्थिति गंभीर जरूर है लेकिन फिलहाल आम लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। ये संक्रमण क्रूज जहाज MV होंडियस से जुड़ा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट 3 अमरीकी जहाजों पर ईरान के हमले के बाद उसे जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगाई। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने अबुधाबी में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से 12 और बच्चों की मौत। और नेपाल की संवैधानिक परिषद ने डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए नामित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर 10:31 हो चुके हैं और 10 सेकंड हो चुके हैं फिलहाल. आपका यानी दिल का मेल बॉक्स पहुंच चुका है आप तक और आप अपनी पसंद के गीत हमें लिखकर भेज सकते हैं. उस फिल्म का नाम भी जरूर लिखिएगा जिससे आप ये गीत सुनना चाहते हैं. अपना नाम, शहर का नाम जरूर लिखिएगा साथ में ताकि मुझे पता हो कि फरमाइश हमें कहाँ से पहुंची है. तो बता दूं कि कहाँ भेजनी है आपको अपनी फरमाइश. व्हाट्सएप नंबर है 9868868753 यानी 9868868753 या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर. जी हाँ, fmgoldairdelhi@gmail.com ये दोनों जादुई एड्रेसेस हैं जिन पर आप हमें भेज सकते हैं अपनी फरमाइशें. दिल का मेल बॉक्स लिख दीजिएगा जरूर और मेरा नाम भी आरजे रेखा क्रिस्टल.

प्लीज, ताकि मुझे पता हो कि ये मेल आपने मुझे भेजा है. वेल, हमारे पास देखिए ना, शुरुआत होती नहीं कि आपके मैसेजेस का सिलसिला शुरू हो जाता है. तो चलिए शामिल कर लेते हैं कुछ संदेशों को. मुंबई से अनु बरजातिया, शमसुल खान और अनुराज बेनारा ने हमें मैसेज पहुंचाया है, और हमें लिखा है कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर और ये सब लिख रहे हैं मजनू कटीला से. सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का मैसेज. सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र जी ने हमें नेपा नगर मध्य प्रदेश से लिखा है. कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय का मैसेज. संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे का नांदेड़ महाराष्ट्र से हमें मैसेज मिला. गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी का हमें नवा शहर पंजाब से मैसेज मिला. और हमें झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया ने लिखा है. आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, सरधना मेरठ से हमें लिख रहे हैं. मास्टर जीवम जैन, मुस्कान जैन, संयम जैन, अनिल और इन सब ने हमें लिखा है सरधना मेरठ से. उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसुदासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद का हमें मैसेज मिला है झारखंड पाकुड़ से. बोहड़ा काछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डे भगत का मैसेज. और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश और सरिता का हमें मैसेज मिला है. अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यस, इन सभी ने हमें लिखा है. अपने मम्मी पापा के साथ हमें सुन रहे हैं. और शिवाजी चौक कटनी से हमें ये मैसेज मिला है. ज्वालापुरी नंगलोई दिल्ली से हमें लिखा है दक्ष तनोरिया ने, और ये मैसेज हमें सतीश का मुंबई से पहुंचा. साथ ही हमें लिखा है प्रदीप सलूजा और जनकपुरी से हमें ये लिख रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा, भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना ने हमें लिखा है जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से. सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश रक्ताप का मैसेज. और हमें लिखा है भटीपुरा महोबा से कृष्ण कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश से हमें लिख रहे हैं. धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान, पूजा, भोपालगढ़, राजस्थान से हमें लिखते हैं. मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और पूरे परिवार ने हमें बुलंदशहर से लिखा है. और नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या का मैसेज हमें पहुंचा. साथ में हमें लिखा है दिग्दर्शन और कविता गौड़ ने मेरठ कैंट से, और ये मैसेज हमें मिला है कहाँ से, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार का. साथ में प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन, राजेश कुमार वर्मा का मैसेज हमें मिला है. राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से. और इसके अलावा हमारे पास सुरेश नारंग, आशा नारंग का मैसेज पहुंचा है सहारनपुर से, और हमें लिखा मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह ने उत्तर प्रदेश दुल्हापुर से. झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, कल्पना ताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता का यवतमाल महाराष्ट्र से, लक्ष्मण राव लोखंडे के साथ मैसेज. महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रगेश, प्रीतेश और पूरे संघई परिवार ने हमें लिखा है. और साथ ही उत्तम कुमार भगत का फिर से मैसेज हमें पहुंच गया है. देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव और डॉली बेबी पूजा तामुरिया का राधिका और प्रभा देवी के साथ, मास्टर अल कबीर के साथ हमें मैसेज पहुंचा है. कहां से, मालोद छत्तीसगढ़ से. किकीर मेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा का मैसेज. और ये मैसेज उग्रसेन यादव, शकुंतला, गरिमा का हमें नई दिल्ली से मिला है. हमें लिखा है होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल और दीपांशु का मैसेज. और ये मैसेज हमें कहां से पहुंचा है, प्रदीप सलूजा और संगीता सलूजा का जनकपुरी से. उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, गीतिका का मैसेज. मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका का मैसेज. श्रीनगर राजस्थान से, श्रीगंगानगर राजस्थान से. और कस्बा गनौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फर...

खान और फारिया ताहिरा का मैसेज। और भी बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन इससे पहले कि इन सबको शामिल करूं, एक गीत शामिल कर लेते हैं। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव और गरिमा ने नई दिल्ली से। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत फिल्म बेटा बेटी से लता जी। और नहीं भाई, ये गीत हमें लिखा है रफी साहब की आवाज में, ये सुनना चाहा है। और साथ में है ये खूबसूरत गीत बेटा बेटी फिल्म से।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं दिल का मेल बॉक्स। 10:43:45 हो चुके हैं। वक्त जल्दी जल्दी दौड़ रहा है तो हम भी जल्दी जल्दी दौड़ लेते हैं और आपके मैसेजेस को शामिल कर लेते हैं। महेश अग्रवाल ने हमें लिखा है बहादुरगढ़ हरियाणा से, और ये मैसेज हमें मिला है जिनमें महतो, रेखा महतो शिवांश मंडल का जमशेदपुर से, साथ ही हमें लिखा है सलीम अख्तर, रेशमा बेगम ने अलीगढ़ से, और ये मैसेज नांगलोई से राजेंद्र जटोलिया, उषा जटोलिया, कृष्णा जटोलिया, पूजा और कमल आरव जटोलिया का मैसेज, और इसके अलावा मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान और गंजवारा कासगंज से हमें लिख रहे हैं। साथ में भवरपुर छत्तीसगढ़ से हमें लिखा है राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा और जगदीश ने, और इसके अलावा नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ का राशिद हुसैन के साथ जैन मंदिर वाली गली कुरावली से मैसेज हमें पहुंचा। हमें लिखा है अनिता मुखी, सिमरन मुखी, सुदर्शन मुखी ने शांति नगर सोनीपत से, और ये मैसेज नई दिल्ली से कमलेश, मुकुल, सचिन और दीपांशु का। साथ में हमें संतोष सक्सेना ने मुंबई से लिखा है, और ये मैसेज कहां से है, महक शर्मा का नहीं पता। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल का हमें कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से मैसेज पहुंचा, और वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला और भावेश सनी का हमें मैसेज मिला। साथ में हमें लिखा है किसने, रेडियो को हम पिछले 62-63 साल से सुनते हैं, ऐसा लगता है ना सुने तो कि कुछ कमी है। बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और इसके अलावा सभी आरजेस बहुत जानदार हैं। जी बिल्कुल। गौरी शंकर ने हमें नांगलोई से मैसेज पहुंचाया है, और हमें अजीत भवसार का मैसेज भी मिला, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गव्या और सुचा सिंह पाठक का मैसेज मिला है जगराव बाजार अनारकली बाजार से, और ये मैसेज चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का, राजकुमारी, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल, आद्विक, समयपुर दिल्ली से अतर सिंह के साथ लिख रहे हैं, और कनॉट प्लेस दिल्ली से माहिरा मलिक, हिबा, आयसा, जोया और जैनब मरियम का मैसेज हमें मिला। भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पुरुष का व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से मैसेज, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर शिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता का मैसेज, और ये हमें लिखा है नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा ने खैल बाजार पानीपत से, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हमें पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का का मैसेज मिला, और राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, शुभचंद्र का मुलापुर दाखा से मैसेज। साथ ही हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज हैं, जैसे गुलाम साबिर राही का ताज मोहम्मद अंसारी के साथ मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें लिख रहे हैं।

0: और उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार, सोनित कुमार खयाला से हमें लिख रहे हैं। साथ में और भी इतने ही सारे मैसेज हैं, लेकिन फिलहाल आपको गीत का इंतजार है, तो चलिए एक गीत सुनते हैं। और इस गीत की फरमाइश हमें किसने भेजी है ये भी ढूंढ लेते हैं। तो आप हमें, जैसा कि आप जानते हैं कि मैसेज कहाँ भेज सकते हैं, आपको हमारे ईमेल आईडीज भी पता है और व्हाट्सएप नंबर भी 9868868753 fmgold@delhi@gmail.com लिख सकते हैं आप हमें। फिलहाल ये गीत मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी का गंज डुंडवाड़ा कासगंज से ये मैसेज आया हमें और आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंच रहा है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, धीरे धीरे शामिल करने की कोशिश रहेगी, लेकिन सभी को शामिल कर पाना बहुत मुश्किल होगा, ये जरूर मैं कह दूँ आपसे। फिलहाल वक्त हुआ है 10:47:52 और ये रहा आपकी पसंद का गीत मोम की गुड़िया फिल्म से, और इस खूबसूरत गीत को आवाज दी है लता जी ने और साथ में ये खूबसूरत गीत अन बख्शी साहब का लिखा हुआ, ये रहा आपके लिए।
1: जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया, तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां चली जाती हूँ, दूर उस पार।

और अब जल्दी से कुछ और मैसेजेस को शामिल कर लूं। जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस का जनकपुरी सहारनपुर से हमें मैसेज मिला है। शेरवानी स्कूल गुंज नुनवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का मैसेज। और हमें लिखा है अभय सिंह, किशन सिंह, आशा, अजय, ज्योति और मंथन, शिवा और मगानी नगर, जय, अभय अहमदाबाद से ये हमें लिख रहे हैं। थोड़ा नामों को क्लियर लिखेंगे तो मुझे पढ़ने में आसानी होगी। साथ में है पूजा और इसके अलावा हमारे पास रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा का मैसेज पहुंचा है हमीरपुर बुंदेलखंड से। और ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष का मैसेज हमें मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से मिला है। बेगम इमरान अनाज, नवाजिश शेख, दानिश, अमन, राधा नामदेव, मास्टर किलू परवेज, गंज डुंडवाड़ा उत्तर प्रदेश से हमें लिख रहे हैं। नबी हसन अब्बासी, शाहनवाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम और यशफ का मैसेज पहुंचा है हमें मारहरा दरवाजा एटा से। और साथ में मुनीब अब्बासी सिकंदरा राव से हमें लिख रहे हैं ये मैसेज। अनिल ठाकुर सराय काले खां से हमें लिख रहे हैं और हमें लिखा है किसने, संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया ने बागपत उत्तर प्रदेश से। प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा का मैसेज खुर्जा से तिलकराज अरोड़ा के साथ। और ज्योति मक्कड़, मन्नत और भारत कमल सुहानी पिंगावाला चौक गोरया जालंधर से हमें लिख रहे हैं और साथ में संदीप मक्कड़ हैं। इसके अलावा हमें लिखा है वडोदरा से जीत रिया जाधव, गिरीश बाम, वैशाली बाम, सोनू निगम ने और साथ में श्रीनगर कश्मीर से साहिल डार उर्फी जान, यूसरा जान, इम्तियाज मुश्ताक डार का मैसेज। सुशांत प्रिया झा और मास्टर निवेश कुमार ने लड्डू कुमारी के साथ हमें लिखा है टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर से। और ये मैसेज कल्पना मदान झा का मानव मयंक के साथ हमें मिला है बिलाड गुजरात से। पी एस नाहवकर, निर्मला, विशाल का मैसेज। नरवेल महाराष्ट्र से मलकापुर से नारायण इंगले, मंगला इंगले, आशीष मोहिरकर का मैसेज। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज का मैसेज। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल और जयवीर सिंह का हमें अमनदीप के साथ मैसेज मिला है। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, रुद्र वर्मा दत्रेंगी से हमें लिख रहे हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं, शामिल करने की पूरी कोशिश रही है लेकिन फिलहाल एक गीत शामिल करते हैं और इसकी फरमाइश हमें भेजी है पारुल सलूजा ने और प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा ने जनकपुरी से। लिखते हैं कि उनकी बिटिया की शादी है और आज उनका इस घर में आखिरी दिन है, तो बिल्कुल आखिरी दिन नहीं कह सकते, आना जाना लगा रहेगा बिटिया का। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ उनके लिए खूबसूरत गीत खास आज आपके लिए। ये रहा 10:56, 41 सेकेंड हो चुके हैं और इसी गीत के साथ दिल का मेल बॉक्स से आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती है विदा। फिर से मुलाकात होगी 11:10 पर लेकर तस्वीर। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार और फिर 11:10 पर तस्वीर सुनिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। निदेशालय ने बताया कि पीड़ितों द्वारा की गई आत्महत्या से संबंधित कई FIR कंपनी के खिलाफ दर्ज है। निदेशालय ने कल कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करीब 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और कंपनी के 3 संस्थापकों को गिरफ्तार किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबुधाबी में बैठक की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया।

0: अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। कल खसरे के संक्रमण से 12 और बच्चों की मौत हो गई। 15 मार्च के बाद से बांग्लादेश में 57 लोगों की मौत खसरे से और 279 लोगों की मौत खसरा जैसे संक्रमण से हुई है। देश में परीक्षण किट की कमी से ये संकट और गहरा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई को 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। आकाशवाणी ने अपनी स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने मैराथन में हिस्सा लिया। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। श्री गौरव द्विवेदी ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आकाशवाणी हमेशा से लोगों की दिल की धड़कन रहा है।
1: आकाशवाणी भारत की धड़कन था, है और रहेगी।
0: आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news are read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi will visit Somnath Temple in Gujarat on the 11th of May to mark 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Rajendra Prasad, in 1951. The Prime Minister today wrote an article in the National Daily Paper and shared this information. In his article, he said it was a privilege for him to attend two important events related to Somnath within a few months. Earlier this year, Prime Minister Modi attended the Somnath Swabhiman Parv, which marked 1,000 years since the first attack on the temple. The Prime Minister called Somnath as a symbol of India's civilizational strength and resilience. Defence Research and Development Organisation DRDO and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. In a statement, the Defence Ministry said that the modular range extension kit Tara is the country's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. It is aimed at enhancing the lethality and accuracy of low-cost weapon to neutralized ground-based targets. The Enforcement Directorate has registered a case against Gamescraft Technologies Limited and its associated entities over allegations of cheating and fraud related to online real money gaming platforms. The case is based on multiple FIRs filed against the company and its founders in connection with allegations of cheating and fraud. ED said there are multiple FIRs registered against the company related to the suicide committed by the victims. The directorate conducted search operations at 17 locations across Karnataka and the National Capital Region yesterday, linked to the Gamescraft Group, its founders and employees. BJP Central Observer for West Bengal and the Union Home Minister Amit Shah will meet newly elected party MLAs in Kolkata to elect legislative leader today. We have more from a correspondent.
3: After its sweeping victory in Bengal, the BJP is seeking to turn the swearing-in ceremony into a political event of national significance. The first BJP government in West Bengal will take oath on Saturday at the Brigade Parade Ground. Preparations for

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं 11:11 देखिए ना कितना खूबसूरत टाइम है और आप और हम निकले हैं आज इस यात्रा पर इस शुभ घड़ी में। तो चलिए आज हम आपको ले चलेंगे तस्वीर के इस खूबसूरत सफर में एक बहुत ही खूबसूरत जगह की सैर पर जिसे हम जानते हैं लाचेन के नाम से, सिक्किम का लाचेन। जी हाँ, यहाँ की यात्रा करेंगे आज हम। उत्तरी सिक्किम में एक मनमोहक अनुभव प्रदान करती है यात्रा। 17,800 फीट के लगभग की ऊंचाई पर स्थित गुरु डोंगमा झील और आसपास का निर्मल वातावरण यहाँ अद्भुत स्थल को देखने का मजा कई गुना बढ़ा देता है। तो अगर आप 3-4 दिन की यात्रा का प्लान कर रहे हैं या 2-3 दिन भी हैं आपके पास, तो आप यहाँ पर जा सकते हैं लाचेन के शांत मठ और यहाँ की पास की थुमथांग घाटी का अनुभव कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है लाचेन, जहां पर आज आप और हम साथ साथ चलेंगे सैर पर। तो सिक्किम का लाचेन आज इस यात्रा का खूबसूरत पड़ाव, खूबसूरत स्थल जहां हम और आप चल रहे हैं। तो बहुत कुछ बताऊंगी आपको इस जगह के बारे में, लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं गीतों के साथ साथ, क्योंकि गीतों के साथ अगर सफर किया जाए तो सचमुच मजा कई गुना बढ़ जाता है। और इस मजे को कई गुना बढ़ाने के लिए आपके साथ आपका चैनल एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमेशा रहता है। फिलहाल मैं आपकी दोस्त आशरेखा क्रिस्टल वॉइस हूँ इस सफर में।

0: तुम्हें अगर आपको पहुंचना है लाचेन तो कैसे पहुंचना है ये आपको मैं बता दूं। लाचेन का उत्तरी सिक्किम की बात कर रहे हैं हम, जहां पहुंचने के लिए सबसे पहले बागडोगरा हवाई अड्डे जो कि 200 किलोमीटर या न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन जो कि 196 किलोमीटर है, यहां पर आप पहुंच सकते हैं। यहां से गंगटोक के लिए टैक्सी ले सकते हैं, जहां से लाचेन के लिए 108 किलोमीटर यानी 4-5 घंटे का सफर आपको करना होता है। लाचेन जाने के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत है, जो ट्रैवल एजेंट के जरिए आपको बनवाना आसान हो जाता है। और अगर मैं बात करूं हवाई मार्ग से आप यहां पर जाना चाहें तो कैसे जाएं, सबसे नजदीकी हवाई अड्डा जैसा कि मैंने कहा बागडोगरा है, यहां से टैक्सी लेकर गंगटोक या सीधे लाचेन आप पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन अगर आप यहां पहुंचना चाहें तो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है, जैसा कि मैं बता चुकी हूं, जहां से गंगटोक के लिए गाड़ियां आसानी से आपको मिल जाती हैं। बाय रोड अगर आप यहां पहुंचना चाहते हैं तो गंगटोक से लाचेन की दूरी लगभग 107 से 108 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं। आप इस रास्ते भी यहां जा सकते हैं। जैसा कि परमिट की बात है तो लाचेन एक ऐसा इलाका है जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, प्रतिबंधित है। भारतीय नागरिकों को इनर लाइन परमिट या रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट की जरूरत होती है, जिसे आईएलपी या आरएपी कहा जाता है, जो गंगटोक से ट्रेवल एजेंट के द्वारा आप बनवा सकते हैं या फिर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पहुंचने के बाद देखना क्या है ये जरूर बताऊंगी मैं, लेकिन अभी नहीं, इस गीत के बाद।
1: आलू दम, आलू दम, आलू दम, दिंग, पटा, पटा, दिंगड़ी पको।

मजा आ रहा है ना इस सफर में, झूमते झूमते आप आगे बढ़ रहे हैं। झुमरू फिल्म से आशा जी और किशोरदा की आवाज़ में ये खूबसूरत गीत अभी आपने इंजॉय किया, और मुझे पता है कि आप साथ साथ कूद रहे थे, नाच रहे थे, और सफर का मजा कई गुना बढ़ जाता है अगर आप ऐसे ही झूमते गाते आगे बढ़ते रहें। फिलहाल एक और प्यारा सा गीत आप तक पहुँचाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आप लाचेन की यात्रा पर जा रहे हैं तो यहाँ पर घूमने के लिए क्या क्या है। गुरु डोंगमार झील है, जो कि गुरु डोंगमार लेक के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। ये दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है, जो कंचनजंगा रेंज के बीच में स्थित है। तो यहाँ पर आप जरूर जाइएगा, ये आपके लिए एक बहुत ही अनोखा अनुभव होगा। चोपता घाटी है, चोपता वैली जिसे कह सकते हैं, इसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जो गर्मियों में रंग बिरंगे फूलों से ढक जाती है, और इसीलिए ये जगह और भी खूबसूरत लगती है जब आप यहाँ पर इन रंग बिरंगे फूलों के साथ तस्वीरें लेते हैं और इन फूलों को अपनी आंखों में संजो कर ले आते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो थंगू वैली यानी थंगू घाटी भी जा सकते हैं। ये घाटी ट्रैकिंग के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन जगह है, जहां से बर्फ से ढकी चोटियों के बहुत ही खूबसूरत नज़ारे दिखाई देते हैं। तो आप इन खूबसूरत चोटियों के नज़ारे लेते जाइए, तस्वीरें लेते जाइए और ट्रैकिंग करते जाइए, तो सचमुच ये भी एक बहुत ही यादगार आपके लिए अनुभव होगा, पल होंगे जिन्हें आप समेट कर अपने साथ ला सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो लाचेन मोनास्ट्री यानी लाचेन मठ है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं। लाचेन गांव में स्थित ये मठ तिब्बती वास्तुकला का बहुत ही खूबसूरत नमूना है, और यहाँ शांति का अनुभव आप कर सकते हैं। शांत जगह पर थोड़ा सा वक्त अगर आप बिताना चाहते हैं तो फिर आपको लाचेन मठ जरूर जाना चाहिए, लाचेन मठ या लाचेन मोनास्ट्री इसे आप कह सकते हैं। सो लामहो झील भी है एक यहाँ पर, ये लेक है। सो लामो झील या लेक, ये भारत की सबसे ऊंची झीलों में से एक है, जो अपनी साफ पानी की वजह से प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत साफ पानी के नज़ारे, और यहाँ इस झील के किनारे शांत बैठकर जब आप इस प्राकृतिक खूबसूरती का अनुभव करेंगे तो सचमुच आप इसे हमेशा के लिए याद रखेंगे, कभी भूल नहीं पाएंगे। आप चाहे तो शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य यानी सेंचुरी है यहाँ भी जा सकते हैं। अप्रैल से जुलाई के बीच यहाँ रंग बिरंगे रोडोडेंड्रोन फूल जो है वो देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर जा सकते हैं, इन फूलों का नज़ारा कर सकते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। तो ये सारी प्लेसेस हैं जो बहुत ख़ास हैं लाचेन में, और इनका नज़ारा आपको ज़रूर करना चाहिए। और भी बहुत कुछ है लाचेन के बारे में जानने को, ज़रूर बताऊँगी, लेकिन इस गीत के बाद। ये खूबसूरत गीत आशा जी की आवाज़ में आपके लिए।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। 11:32 हो चुके हैं और आप हैं तस्वीर के सफर में मेरे साथ, जिसमें आज हम निकले हैं यात्रा पर सिक्किम के लाचेन की। लाचेन बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहां पर बहुत कुछ है देखने के लिए। बहुत से मठ हैं, शांत लेक्स हैं, झीलें हैं और शांत प्राकृतिक नजारे हैं। बहुत कुछ है देखने के लिए, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन इस गीत के बाद फिलहाल ये गीत

सुबह लाचेन की बात कर रहे थे हम, तो लाचेन में संस्कृति की अगर बात करें तो खास तौर से भूटिया और तिब्बती परंपराओं का एक अनूठा संगम है यहाँ पर, जो 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक शांत प्राकृतिक और पारंपरिक समुदाय है। यहाँ की संस्कृति में तुम्बा, जो बाजरे से बना एक स्थानीय पेय है, इसका सामाजिक महत्व है, जिसे मेहमानों के स्वागत में परोसा जाता है। यहाँ के लोग प्रकृति के करीब रहते हैं, जिसमें नमक वाली चाय जिसे सुजा और पारंपरिक खब्जे यानी स्नैक्स के उनके दैनिक जीवन का हिस्सा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ की परंपराओं की, तो लाचेन में खासतौर से जैसा कि मैंने कहा भूटिया और तिब्बती जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ के निवासियों की संस्कृति में पांग लाबसोल जैसे त्यौहार

और बौद्ध परंपराओं का गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। तुम्बा और सामाजिक ताने बाने की अगर बात करें तो भूटिया संस्कृति में तुम्बा, जिसकी अभी मैंने बात की, इसका बहुत ही सामाजिक महत्व है। इसे लकड़ी के पीपे में परोसा जाता है जिसे गर्म पानी डालकर पिया जाता है। ये परंपरा सामाजिक बातचीत और चर्चाओं को बढ़ावा देती है। यहाँ के लोग सुजा, जिसे नमक वाली चाय जैसा कि अभी बताया मैंने, और खब्जे का सेवन करते हैं जो यहाँ की ठंडी जलवायु में काफी मशहूर है, फेमस है और काफी फायदेमंद भी रहता है। ये गर्माहट देता है शरीर को। इसके अलावा प्रकृति के साथ जीवन जीने को बहुत पसंद करते हैं यहाँ के लोग। लाचेन के लोग प्रकृति से गहराई से जुड़े हैं और एक शांत पारंपरिक जीवन शैली जीते हैं। और यहाँ क्योंकि भूटिया और तिब्बती नेपाली भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ के जो जनजातियां हैं उनमें खास तौर पर, तो यहाँ आने वालों को इन भाषाओं के साथ बातचीत करने के अलावा आप थोड़ा बहुत अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। वैसे तिब्बती और नेपाली भाषाएं हिंदी भाषा के साथ यहाँ पर बोली जाती हैं। मौसम के मिजाज की बात करें तो धूप और बादलों वाली सुबह के साथ यहाँ के लोग सुबह और दोपहर में अलग अलग गतिविधियों का आनंद लेते हैं। मौसम जो है वो काफी सुहावना भी रहता है। कब आपको जाना चाहिए, कैसे, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, सब कुछ बताऊंगी आपको, लेकिन इस गीत के बाद। ये रहा रफी साहब की आवाज में।

नमस्कार, मैं डॉक्टर शोभना नारायण कथक नृत्यांगना, गुरु एवं कोरियोग्राफर हूँ। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के इस गौरवपूर्ण अवसर पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मैं आकाशवाणी से

कई दशकों से जुड़ी हुई हूं और मैंने देखा है कि आकाशवाणी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत, नृत्य और संस्कृति के संरक्षण एवं प्रसार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह मंच कलाकारों के लिए अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम रहा है, जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जन जन तक पहुंचाया है। कथक जैसी समृद्ध नृत्य परंपरा को भी आकाशवाणी ने अपनी तरंगों के माध्यम से देश विदेश में पहचान दिलाने में योगदान दिया है। मैं कामना करती हूं कि आकाशवाणी इसी प्रकार कला, संस्कृति और समाज को जोड़ते हुए नई ऊंचाइयों को छूता रहे। एक बार फिर मैं आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं।

11:44 हो चुके हैं आप और हम लाचेन की यात्रा पर निकले हैं। सिक्किम का लाचेन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है देखने के लिए, लेकिन यहाँ अगर आप खरीदारी करने का सोच रहे हैं तो फिर आप क्या खरीद सकते हैं, चलिए ये भी बता देती हूँ। लाचेन में बहुत ठंड होती है, इसलिए यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा हाथ से बुने हुए ऊनी कपड़े जैसे स्वेटर, टोपी, मोजे और शॉल बहुत गर्म और अच्छी गुणवत्ता के होते हैं, तो आप इन्हें भी खरीद सकते हैं। स्थानीय तिब्बती और लेपचा संस्कृति से प्रभावित हस्तशिल्प की चीजें जो है वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। आप इन्हें खरीद सकते हैं। पारंपरिक डिजाइन्स वाले छोटे ऊनी कालीन यानी कारपेट्स आपको यहाँ मिलेंगे, आप इन्हें भी घर ला सकते हैं। और बौद्ध संस्कृति से जुड़ी छोटी छोटी ऐसी बहुत सी चीजें जैसे कि प्रेयर व्हील्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, प्रार्थना चक्र जिन्हें घुमाकर इस संस्कृति में काफी अच्छा माना जाता है, इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि वो नेगेटिविटी को दूर करती है। ऐसी बहुत सी चीजें आपको आसानी से यहाँ पर मिलेंगी, तो आप इन्हें खरीद कर यादगार के तौर पर अपने घर ला सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि यहाँ ATM की सुविधा आपको कहीं कहीं मिल सकती है या कई जगह नहीं भी मिलेगी, सीमित हो सकती है, इसलिए पर्याप्त कैश आप अपने साथ रख सकते हैं ताकि आपको कहीं अगर नेटवर्क का इश्यू आए या कोई ATM ना मिले तो आप आसानी से अपने साथ पैसा जो लेकर गए हैं उसका इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा यहाँ का मौसम ठंडा रहता है, इसलिए खरीदारी के दौरान गर्म कपड़े पहनना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ की ठंड हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा कर दे और आप यहाँ की ठंड में बिना कपड़ों के सर्वाइव ना कर पाए, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को गर्म रखने के लिए अच्छी तरह से ढके कवर करें। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उनकी जीविका जो है वो ख़ास तौर से उन्हीं सामानों से बनती है जो अपने हाथों से बनाते हैं। लोग यहाँ आते हैं, टूरिस्ट यहाँ पहुँचते हैं, उन्हें ख़रीदते हैं और ये उनकी जीविका का एक बहुत बड़ा जरिया है, इसलिए स्थानीय लोगों के साथ आप यहाँ पर जुड़ें, उनसे बना हुआ उनके हाथ का बना हुआ सामान ज़रूर ख़रीदें ताकि उनको थोड़ा बहुत उनकी जीविका के लिए आपका योगदान मिले। वोकल फॉर लोकल बनिए, लोकल लोगों से यहाँ पर सामान खरीदना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का उनकी जीविका में आपकी तरफ से योगदान होगा। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्योंकि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसलिए उससे भी ज़्यादा एक शांत रहने की जगह है, इसलिए खरीदारी के जो ऑप्शंस हैं वो सीमित हैं, तो आपको जहाँ जो दिखे छोटा मोटा आप अपने लिए खरीद सकते हैं। और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन बताऊंगी इस गीत के बाद। फिलहाल गीत रफी साहब की आवाज़ में, जंगली फिल्म से आपके लिए।

दोस्तों लाचेन यानी उत्तरी सिक्किम में स्थित एक शांत और बहुत ही सुंदर पहाड़ी गांव है ये, क्योंकि ये एक बहुत छोटा और ऊंचाई पर स्थित जगह है, स्थान है। यहाँ रुकने के लिए ज्यादातर होमस्टे और साधारण होटल उपलब्ध हैं। अगर आप लाचेन में स्थानीय लोगों के साथ रहकर उनके जनजीवन को करीब से देखने और घर का बना खाना खाने के लिए यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, यहाँ का मज़ा लेना चाहते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं, तो अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पर आप होम स्टे में ठहरे। ये एक आरामदायक और कोजी एनवायरनमेंट आपको देगा। और यहाँ के ज़्यादातर होटल्स और होम स्टे काठ के बने होते हैं, जो सर्दियों में ठंड से बचाने में आपको काफ़ी मदद करते हैं। लाचेन मठ के पास या गाँव के ख़ास इलाके में आप रुक सकते हैं। लाचेन में रुकने की सुविधा थोड़ी सी लिमिटेड है, सीमित है, इसलिए बुकिंग पहले से ही करवा कर जाएं। और यहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखें। यहाँ रहने की व्यवस्था बहुत ही सरल है, लग्जरी होटल्स की उम्मीद आप ज़्यादा ना करें और यहाँ पर होम स्टेज का आनंद ज़रूर लेना याद रखें। यहाँ का तापमान बहुत कम हो सकता है, इसलिए हीटर या गर्म पानी की सुविधा के बारे में यहाँ पहले से पूछ लें। घूमने का सबसे अच्छा समय इस जगह पर मार्च से जून का मौसम है, जब वसंत के फूल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, और सितंबर से दिसंबर जब साफ नज़ारे आपको यहाँ पर मिल सकते हैं, जिनमें आप तस्वीरें ले सकते हैं और आसानी से इस जगह पर घूम सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन है ये, तो प्राकृतिक जो खूबसूरती है, प्राकृतिक नज़ारे जो हैं वो यहाँ बहुत आपको देखने के लिए मिलेंगे। बर्फ से ढके पहाड़, गुरु डोंगमा झील, ऐसे प्रतिष्ठित बहुत से स्थान हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। रोमांच भरी यात्रा के लिए ये एक बहुत ही बेहतर जगह है, जहाँ आपको साहसिक ड्राइविंग और लुभावने नज़ारों का अनुभव मिल सकता है। तो आप अगर लाचेन जो है वो चारों तरफ से ऊँचे पहाड़ों और हरियाली गिरा है, अगर आप इनका मजा लेना चाहते हैं तो आपको यहां जरूर जाना चाहिए। दुनिया की सबसे ऊंची झीलों में से एक गुरु डोंगमा झील है यहां पर, जो बहुत खूबसूरत है, इसे देखने के लिए आप जा सकते हैं। और अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो लाचेन के रास्तों में कुछ ऐसे रास्ते हैं जहां पर बाइकिंग या ड्राइविंग करना काफी एडवेंचर से भरा हो सकता है। तो अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं, बाइकिंग करना पसंद करते हैं, तो भी आप यहां पर जा सकते हैं। और इसके अलावा ये जगह भेदभाव से दूर एक

इसी के साथ आपसे आपकी दोस्त आर्जे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती है आज के लिए विदा। फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात जरूर होगी। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।

कसता इस थिंग ने चुप चुप के फिर मिलू के तं सुनीति चौहान ने सनजात समरिलु अयांग श्रिकन हिमेश रेशमिया।

दक संगे जे रंगे दिल तो पागल है फैल मिलू, लता मंगेशकर तंग उदित नारायण ने सनजाज, लुर सुमकन अनन बख्शी यांग लोयांग श्रीकन इन पिन उत्तम सिंह। फैल मिलू डिग्री में नंगा का सता यस बोस फैल मिलू, अभिजीत तंग अलका याग्निक ने सनजाद, लुर सुमकन जावेद अख्तर यांग लोयांग श्रीकन जतिन ललित।

दर्शन ये रंगे स्थित जुग पे का कभी खुशी कभी गम फिल्म लू आलका एक तंग सोनू निगम ने सनजाज लुरसुम कन अनिल पांडे यांग लुयांग श्रीकन इन पिन संदेश शंडिलिया दर्शन ये रंगे फिल्म लू रिक सनजाज जे आकाशवाणी लेने जुंजिक तांगिन ये मिचु सोचुंग जफे छादुक कसता एनसीईआरटी चिंदाजत कनेडिक रिम उमंगे खक चिक्सटोंग निपक्या केचुपा सनजाज

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
0: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
0: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
0: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
0: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
0: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
0: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
0: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की,

0: सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है।
1: जी
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
1: जी
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
1: जी
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
1: जी
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी समुद्र की गहराई के तीन भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओ, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800-440-5559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@ciet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है, रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविन्द्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सॉनेट शैली में लिखे गए हैं। सॉनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल भंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांको की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवक शाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर

0: बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्वबोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजादपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों

0: बाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।

0: पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
1: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविन्द्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविन्द्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविन्द्रनाथ ने कहा था,
0: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
1: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
0: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूं, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
0: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
1: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविन्द्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून, न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमरीका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविन्द्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले।

अरे अभागे, खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले, रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले, तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले, तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग,
3: उमंग, उमंग। एनसीईआरटी चिंतक तत्कालीन डिग्री उमंग के खक चिकसोंग युग के जुबा सन आज आकाशवाणी लेने जुन चिकताइन ये मैं चुसो चिक छातु कसत आकाशवाणी दिल्ली ने सुनना हिंदी यंग तेस्ते ने अंगजल हासिल सनजात।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
4: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों

देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाइयों, इस कार्यक्रम में अब सुनेंगे फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है हिट स्टोरी 3 फिल्म से, अरमान मलिक और नीति मोहन की आवाज़ों में। गीतकार है रश्मि विराक और संगीतकार है अमल मलिक।

इस कार्यक्रम में अगले गीत सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में सिंघम रिटर्न फिल्म से गीत। गीतकार है संदीप नाथ और संगीतकार है जीत गंगुली।

सनम रे फिल्म से गीत सुनते हैं अमल मलिक और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार है मनोज यादव और संगीतकार है अमल मलिक।

अभी आप सुन रहे थे एक विलन फिल्म से अंकित तिवारी को, गीतकार थे मनोज मुंतशिर। फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में आइए आप सुनते हैं प्रेम रतन धन पायो फिल्म से पलक मुच्छल की आवाज़ में। गीतकार है इरशाद कमील और संगीतकार है हिमेश रेशमिया।

फिल्म गीतों के अंत में जय हो फिल्म से गीत, शान और श्रेय घोषाल की आवाज़ों में, गीतकार है समीर और संगीतकार है साजिद वाजिद।

0: ngaje akashvani leni junjik tangin ni mechu chu chik tang skar mangap chu chaduk kasata akashvani dilli ne sun la urdina na chul midi news tang do pehar samachar sanajar
1: आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनाकिद करेगी। डीआरडीओ और भारतीय फजाइया ने मुल्की में तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाल अलामत करार दिया है। बैनुल अक्वामी तजारत की अमरीकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया की तरफ से भारत से लेकर दीगर मुल्कों तक आयद किए गए 10% महसूल को गैर कानूनी करार दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात की यकीन दहानी में मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी न्यूक्लियाई हथियारों का हामिल ना हो। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली में डेली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल बीजेपी कानून साज पार्टी आज सहपहर अपना लीडर मुंतखब करने के लिए कोलकाता में मीटिंग करेगी। पार्टी के मरकजी मुशाहिद और मरकजी वजीर दाखला अमित शाह इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। बीजेपी ने रियासत के हालिया असेंबली इंतखाबात में तारीखी जीत दर्ज की है, जिसके बाद रियासत में टीएमसी का 15 साल दौरे हुकूमत खत्म हो गया। मगरबी बंगाल की पहली बीजेपी हुकूमत की हलफ बरदारी तकरीब कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नबीन और बीजेपी के जेर इकतदार तमाम रियासतों के उजराए आला हलफ बरदारी की इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO और भारतीय फजाइया ने मजीद फासले तक मार करने वाले छोटे हथियार तारा की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। यह तजर्बा कल उड़ीसा के साहिल से कुछ दूर किया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस पहली आजमाइशी परवाज पर DRDO, भारतीय फजाइया, DCPP और सनत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस कामयाबी को मुल्क ही में तैयार किए गए दिफाई हथियारों की तरक्की के मैदान में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि मार करने की दूरी में इजाफे वाला यह हथियार तारा मुल्क में ही तैयार किया गया ऐसा पहला ग्लाइड हथियार निजाम है, जो बगैर रहनुमाई वाले हथियार को बारीक निशाने वाले हथियार में बदल देता है। वजारत ने बताया कि तारा को हैदराबाद के तहकीकी मरकज इमारत प्लस और DRDO की दीगर लेबोरेटरीज ने मिलकर तैयार किया है। इसका मकसद कम कीमत वाले हथियार की बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचकर दुश्मन को हलाक करने की सलाहियत में इजाफा करना है। यह हथियार तरक्की और इसके बड़े पैमाने पर तैयारी से मुतालिक शराकत दारों और दीगर भारतीय सनतों ने तैयार किया है और इसे बड़ी तादाद में तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। न्यूज डेस्क से सौम्य शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 मई को गुजरात में सोमनाथ मंदिर जाएंगे। 1951 में मंदिर का अहया किए जाने के बाद भारत के पहले सदर जमहूरिया राजेंद्र प्रसाद के हाथों इफ्तिताह किए जाने के बाद से 75 साल पूरे होने के मौके पर जनाब मोदी वहां जाएंगे। वजीर आजम ने आज एक कौमी रोजनामे में एक मजमून तहरीर किया है और इसमें ये जानकारी दी गई है। अपने मजमून में जनाब मोदी ने कहा है कि उन्हें चंद माह के अंदर ही सोमनाथ से वाबस्ता दो अहम तकरीबात में शिरकत करने का शर्फ हासिल हो रहा है। इससे

0: के रोल को याद किया। जनाब मोदी ने कहा कि सरदार पटेल का ये मानना था कि सोमनाथ की तामीर नौ एक कौमी फर्ज है। वजीर आजम ने सोमनाथ की दास्तान को सरकार के विकास भी विरासत भी नज़रिए के साथ मुंसलिक किया, जिसमें विरासत को महफूज रखते हुए तरक्की पर तवज्जो मरकूज की जाती है। जनाब मोदी ने कहा कि मंदिर की तारीख से वाबस्ता दिलेरी और कुर्बानी के एजाज के सिलसिले में अगले 1000 दिन के लिए सोमनाथ में खसूसी पूजा अर्चना की जाएगी। जनाब मोदी ने हमवतनों पर भी जोर दिया कि वो सोमनाथ जाएं और बकौल उनके मुल्क की तहजीब के अटूट जज्बे को महसूस करें। आकाशवाणी ने आज अपने क़याम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का अहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की यह मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे।
1: इसी तरह की मैराथन और वॉकाथन का इनेकाद आकाशवाणी के मुल्कगीर नेटवर्क ने भी किया था, जिसके तहत 90 साल पूरे होने के मौके पर मुनक़िदा इन तकरीबात में अवामी सरगर्मी और लोगों तक पहुंचने को यकीनी बनाया गया है। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस मैराथन से लोगों तक चुस्त दुरुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुंचेगा।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इस महीने मुल्क भर में 232 आकाशवाणी मरकजों पर मुनाकिद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबात मुल्क की खिदमत में अवामी नशरियात के तौर पर आकाशवाणी के तआवुन के हिस्से के तौर पर मनाई जा रही है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक इस पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमेरिका के तजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदामात किए हैं। छोटे कारोबारी घरानों की जानिब से अदालत ने इन महसूलात को चैलेंज किए जाने के बाद ये फैसला सामने आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका और यूरोपीय यूनियन इस बात को यकीनी बनाने के लिए मुत्तहिद हैं कि ईरान कभी भी न्यूक्लियाई हथियार हासिल न कर पाए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लेन के साथ टेलीफोन पर उनकी बातचीत बहुत अच्छी रही और उन्होंने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर ट्रंप ने कहा कि तरफैन के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है कि एक ऐसे निज़ाम को लाखों लोगों की जानों को खतरे में डालने वाला हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जो अपने ही लोगों की जान लेता हो। IPL क्रिकेट में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में डेली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। कल रात लखनऊ के एकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासर मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। लखनऊ के लिए मिचेल मार्श ने 56 गेंदों में शानदार 111 रन बनाए और उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। आज कोलकाता में मगरबी बंगाल की बीजेपी कानून साज पार्टी अपना रहनुमा मुंतखब करने के लिए मीटिंग मुनाकिद करेगी। DRDO और भारतीय फजाइया ने मुल्क ही में तैयार किए गए तारा ग्लाइड हथियार की पहली आजमाइशी परवाज कामयाबी के साथ मुकम्मल की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत के इस्तेहकाम, इत्तेहाद और तहजीबी ताकत की एक लाजवाब अलामत करार दिया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
4: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
5: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
6: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
5: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
6: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974

0: 71 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6वें युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर

0: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Medium wave kilohertz 60 apchung aksum yang na meter span ngip kya ge chuk ebji tang shuzur gu. Yang FM megahertz gyan alchik tang shuzur chigika. Nga je akash mani ileni junjik tangin. Ngime chusog niz na pet chaduk. Kasada chusog niz tang apchung a tsukpa lurik sanazad. Ina son la konchok raftane salkani ilubo sanazad.

0: पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: kaji tari na yong tuwa minum jisti yang ayo chusut po shiket benle sompa san tari yu chusut po sujil pep na yang ayo tangmai mara yabshu jisit
1: le lungtin khange nasul is dekha gina casual ildanika news reader kam translator yana ladak se nasul silkan tang gurkan riklenche cpr deltos pa gun ikane nyanjus gun lene jik tang enok deltos pa gun graduate zat kan ladak se skat gela shiskan tang nasul silches la skat gela yut kan yungo shiz enok radio tang tv nanga journalist se chul la chakla zat kan ne thongom chan tang computer il danika shizga yut kan gulnas nang askar te salches enok yang ranglo ni shur chak shik ne ngapchu chukpa yona dikchasi nok thukzo yotna deltospa gunes junel de chesrnga chukpa le lungtin khangai nasulis dekha gena rangna nyanjus gun sal gost e nok jipsal inna laskung ne thugyu za thupchasi yotte nok ada gujunga je tongi chenmo ashish kundre ujuk senanga lokshuk laskung se sponbo chenmo gunes sarpel chokspa jikboda za te ngitu beja gun rings da lokshuk laskung se lasir gun gere chokspa jigasta ches inok molte tonsa gas in yotkan skola salpo za te inok itu tungsi chenmos ujung ngazde chokne ladak se mimans gunla noche se lasir kazuk shigam shulches manok molte salpo za te no
2: एल जी साहब ने कई बार कहा है, मैंने कई बार कहा है कि हम कोई कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जिससे लद्दाख के लोगों का, यहाँ के जमीन का, कल्चर का कोई नुकसान हो, कभी हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो लोगों को आश्वस्त रहना चाहिए, लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से हमको ये भी सोचना है कि हम आगे जा करके वो क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जहाँ हमारे अपने खुद के रेवेन्यू के स्रोत जो है बढ़े, हमारे खर्चे घटे। आज की डेट में जो पावर हम टैरिफ जो दर हम लोगों से इकट्ठा करते हैं, सारे लोग बिजली का बिल भरते हैं, वो जो बिजली के बिल से पैसे आते हैं वो केंद्र सरकार के फंड में चले जाते हैं आज की डेट में, हमारे पास वापस लगाने के लिए नहीं बचते। अगर कॉरपोरेशन बनती है कोई भी, जैसे जम्मू कश्मीर में भी है, जो वो इकट्ठा करते हैं पैसा उन्हीं के पास रहता है, ताकि वो मान लीजिए तारें को टूट गई, खराब हो गई, सब स्टेशन खराब हो गए, उनकी रिपेयर के लिए गांव के अंदर और बिजली बढ़ाने के लिए दूर दराज के इलाकों में वो पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो इसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
1: tang chok ner chojung shirik lunkung tang international buddhist confederation niskwe zungde la dangujung na pe rignas chukla lomnir khaina la tak se chos tang chit niskwe uskyong skabje geltas bakula rimpo che choges kutse jarna me skola documentary loknyan jik zigra phula jatte nok e loknyan gyote geltas bakula rimpo che choges la dak se na mimans gunla chos tang chit niskwe thokne jap tok ju jat khan tang mongolei na nga nak pe chos tarkyab zache se thoga chaklas gangshan zatkhan eskola shada zate inok digri menanga international buddhist confederation ne tungchi sharche khenzur changchup choldan rinpoche ladakh se khazwang genthupstan paldan kushuk bakula rinpoche choge tungchi sonam wangchuk tang gindun chunma tang lopte loptuk gunthu sa zate inok itus khazwang gune sungcha sala zadinjik gyalthas bakula rimbo che skuting churgu pa choges chose uskyong shide goskyong tang gyaga res kutsap se chula mimans gunla choschit niskwe thokne skabje rimbo che choge katin sumet jua jatkan gunta na jat inok lelungtin khang gute ladak se nasul gun samkan langyas la nyime na thengjis ngatu churgu nyime chuzo nis tang skarma ngap chunga nga pito chuzo shnga tang pito chuzo dun tang skarma chong ka sanchis la phulenji ginok ladak se nasul gun samkan langyas se chichok gilla meka YouTube, Facebook, tang ek sika AIR le news sika santup chesiyo tenok akashwani lenas tanasul thon.

0: सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ के रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर लेकिन कागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने यूरोपीय संघ से स्कॉटलैंड के टर्नबेरी में व्यापार समझौते के अंतर्गत टैरिफ में कटौती से जुड़ी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ को समझौता लागू करने के लिए अमेरिका की 250वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ तक का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उच्च टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उधर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 10% के वैश्विक शुल्क को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हेलो फरमाइश
1: जी।
0: नमस्कार, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी कैसे हैं? हेलो फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत है जी।
1: तो कैसे हो सिस्टर?
0: हम बिल्कुल ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
1: मतलब मैं भी ठीक हूँ। आपने मेरा फोन उठा लिया, मेरा दिल एकदम खुश हो गया।
0: क्या बात है, हम भी खुश हो जाते हैं जब आपकी आवाज हम सुनते हैं
1: जी। क्योंकि कुछ लोग दुनिया में इतने प्यारे होते, कुछ लोग दुनिया में इतने प्यारे होते कि उन्हें याद करना दिल को बेहद अच्छा लगता है। जैसे कि आप जैसे दोस्त मेरा और बहुत छोटा भाई बहन का, एकदम मतलब बाकी सब छोटा भाई बहन का यही कहना है ना
0: जी। दोस्त होना बहुत खूबसूरत बात होती है और दोस्त वो एहसास है जो जिंदगी को खूबसूरत बना देता है। दूर रहकर भी दोस्त दिल के सबसे करीब नजर आता है।
1: जी जी जी। एक बात कहे जाते हैं, तनाव
0: जी
1: से केवल समस्याएं जन्म ले सकती है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत आपने कहा कि जिंदगी में तनाव और टेंशन तो आते ही रहते हैं, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह भी जरूर आती है।
1: हमारे यहाँ पे तो एटमोस्फेयर थोड़ा बहुत बदल गया, क्योंकि ताना काफी दिनों से हमारे यहाँ पे बारिश हो रहा है। आज थोड़ा बहुत बारिश से थम सा गया और थोड़ा बहुत गर्मी लग है। नहीं है लेकिन सूर्य देवता बूढ़े है तो इसलिए थोड़ा बहुत और एकदम जगमग हो गया।
0: बहुत ही खूबसूरत वहाँ का मौसम जो है, आपने कहा सुहाना मौसम हो चुका है, और लद्दाख का मौसम भी किसी खूबसूरत नज़म से कम नहीं है। कभी बहुत ठंड पड़ जाती है, कभी धूप की हल्की सी गर्माहट।
1: एक तरीके से क्या होता है, आपके वहाँ के जो मौसम जो है वो तो क्या मतलब ये बयान नहीं कर सकता। बहुत अच्छी मौसम है, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा बहुत मौसम का चेंज होता है, क्योंकि अभी तो ये ग्रीष्म काल आ गया तो इसलिए थोड़ा बहुत गर्मी है। लेकिन काफी दिनों से बारिश हुआ तो इसलिए एटमोस्फेयर थोड़ा बहुत ठंड हो गया
0: जी।
1: और आज इस प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ
0: जी। बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं
1: जी। तो फिल्म का नाम है भाई भाई और गाने का बोल ऐसे है, आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है
0: जी। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी की आवाजों में जी।
1: जी और मैम कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ।
0: जरूर कीजिए सर।
1: पहले है आप जैसे मेरे दोस्त है, मेरे सिस्टर है के लिए पहले डेडिकेशन है, और बसंत लाल सूर्यवंशी जी, विजय सिंह लखेरा जी, अमर सिंह साहू जी, और है हमारे अमित तिवारी जी, और उसका नाम है ये अनवर बिहारी भाई जी के लिए, और है हमारे प्रेमजीत चक्रवर्ती जी है, और कश्मीर से हमारे बहुत अच्छे दोस्त है पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए, और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं इस मन भवन प्रोग्राम। सबके लिए बहरहाल आप अच्छे रहिए।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: श्रोता भाई बहन अच्छे रहे, ये मेरा गर्व से
0: जी। अनुप कुमार भट्टाचार्य जी, और आपने भाई भाई फिल्म से ये गीत आंखें जिसकी मंदिर मस्जिद जी ये खूबसूरत गाना आपने फरमाइश किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम
0: जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है हमेशा, और आज भी आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम में जुड़े, अपनी बात रखी और साथ ही साथ शायरी के साथ, क्या खूबसूरत बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत है जी। अपना नाम बताइए सर।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ।
0: जी, मध्य प्रदेश से बात कर रहे हैं आप?
1: जी
0: जी, बताइए कैसे हैं रमेश जी?
1: स्वस्थ है।

0: है, आप लोगों की मेहरबानी, ऊपर वाले की कृपा है, गर्मी के आनंद ले रहे हैं, कूलर में बैठे हैं, दुकान में काम कर रहे हैं, आपका प्रोग्राम सुनते हैं, मस्त रहते हैं।
1: क्या बात है, मध्य प्रदेश से आपने कॉल किया है। और अक्सर हम एमपी को हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं क्योंकि
0: जी
1: देश के बीच में स्थित है, इसलिए शायद कहा जाता है, मैं गलत ना हूँ तो।
0: जी भारत का हृदय है।
1: क्या बात है जी। रमेश जी आप मस्त हैं, स्वस्थ हैं, और क्या कहा आपने?
0: मस्त है, स्वस्थ है, कूलर में बैठे हैं, गर्मी के आनंद ले रहे हैं। मौसम ये होता है, मौसम गर्मी का गर्मी में होता है तो गर्मी में लगेगी उसका आनंद लो, सर्दी है तो सर्दी का आनंद लो, बरसात है तो बरसात का आनंद लो। अपन कहेंगे खूब गर्मी हो रही तो उससे क्या होगा।
1: सही कहा आपने, लगता है आजकल आप जो है गर्मियों का खूब आनंद ले रहे हैं और
0: जी
1: हाँ खुशनुमा मौसम का मजा भी उठा रहे हैं आप
0: जी।
1: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
0: फिल्म का नाम है सुहाग, तेरी रब ने बना दी जोड़ी।
1: जी, सुहाग फिल्म से रब ने
0: तेरी
1: बना
0: रब ने बना दी जोड़ी।
1: जी बहुत ही खूबसूरत। आपके साथ कौन कौन है रमेश जी?
0: मेरे साथ है भगवान सिंह परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसरी सिंह राजपूत है, मंगलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, धर्मवीर दिल्ली से है, और आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूनम जी है कानपुर से, पूर्णिमा जी है विजयपुरम से, अविनाश जी है, राकेश जी है शिमला से, और गोल्डी जी है, माए भाई को मुंडा है, रामर सिंह साहू है।
1: जी तो रमेश जी ये सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आपके लिए सच्ची दोस्ती का क्या मतलब है? आपने इतने सारे दोस्तों का नाम लिया अभी।
0: दोस्ती का नाम आज के जमाने में दोस्त तो मतलब ये है रेडियो पर दोस्त है, तो दोस्त गांव में बनाते हैं, वो दोस्त होता सुख में दुख में सारे में काम आता है, वो साथ रहते हैं, दुख सुख समझता है, वो दोस्ती। और ये दोस्ती तो रेडियो पे बने हैं, पर मित्र बने हैं रेडियो पे, एक का एक मतलब मित्र बन गए, बातचीत करते हैं, अपन गाना सुनते हैं तो नाम ले देते हैं तो खुश हो जाते हैं कि नहीं हमारे दोस्त का फोन लगा, उन्होंने हमारा नाम लिया।
1: चलो ये भी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी में अगर सच्चे दोस्त साथ हो तो हर सफर आसान लगता है हम सभी को।
0: जी जी
1: जी,
0: सच्चा दोस्त, सच्चा दोस्त तो वही होता है जो सुख में भी दुख, सुख में तो सभी साथ ही होते, दुख में होना चाहिए, दुख में साथ खड़ा है मतलब वो अपना मित्र है वो।
1: रेडियो और दोस्त में भी एक खास बात होती है, दोनों हमेशा दिल के करीब रहते हैं, तो बहुत खास है आप, रेडियो के माध्यम से आप सभी ने दोस्त बनाए हैं।
0: जी
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रमेश जी। तो आपने जो फरमाइश किया है ये गीत हम आप सभी के लिए सुना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
0: धन्यवाद मैम, आपको हमारा फोन रिसीव करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी कॉल करते हैं तभी तो ये है हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
0: जी जी
1: जी, धन्यवाद
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से? श्रीनगर से बात कर रहे हैं सर?
1: हाँ, वसी पहचाना आपने मैडम।
0: सर अपना नाम बताइए सर।
1: लतीफ अहमद रीना।
0: लतीफ जी?
1: हाँ जी।
0: बहुत खूबसूरत नाम है, इसका मतलब क्या है? लतीफ का मतलब?
1: लतीफ का मतलब लुत्फ।
0: क्या बात है।
1: हाँ,
0: फिर रेडियो से क्या कनेक्शन है बताइए मुझे।
1: मुझे तो ये शौक है।
0: शौक है रेडियो सुनना?
1: हाँ
0: जी। रेडियो में ज्यादातर क्या सुनना पसंद करते हैं आप?
1: सभी आपकी आवाज से बहुत अच्छा है।
0: रेडियो का कनेक्शन सिर्फ आवाजों से ही नहीं, दिलों से भी होता है।
1: हाँ हाँ, सही बात, दिलों से भी, आवाज से भी। मगर गाना तो हम नेट से भी सुन सकेगा, मगर आवाज का रिश्ता बरकरार रहना चाहिए।
0: जी। और लतीफ जी, मौसम कैसा है वहाँ?
1: मौसम तो अब सुहाना अब होने लगा, मौसम ठीक है।
0: मौसम ठीक है? कश्मीर का मौसम बहुत सुहाना होता है ना?
1: हाँ हाँ, कभी तो बारिश, कभी मौसम ठीक रहता है, ऐसा ऐसा मौसम रहता है।
0: जी।
1: हाँ,
0: और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: मुझे सुना है ये दिल आशिकाना है ना वो?
0: जी
1: हाँ, वो ही गाना सुना है। हाँ, दूसरा वाला इसमें है ना वो गाना?
0: थोड़ा गुनगुनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा। लतीफ जी,
1: मैं अभी याद नहीं आता है, तभी गुनगुनाता था मगर अभी याद नहीं आता है।
0: जी किसी का नाम लेना चाहते हैं?
1: बस
0: भी
1: मेरे साथ सब सुनेगा, आप सुनेगा।
0: आपकी आवाज बहुत धीमी आवाज आ रही है।
1: यहाँ पे आजकल गर्मी है, उसी वजह से हल्की हल्की बात कर रहा है।
0: लेकिन खूबसूरत बात तो ये भी है, कश्मीर का मौसम वाकई सुहाना और दिल को सुकून देने वाला होता है।
1: हाँ सही बात, वहाँ क्या समोसा है आज?
0: यहाँ भी बिल्कुल नॉर्मल है, ना
1: हाँ
0: गर्मी है ज्यादा ना ठंड है।
1: अच्छा,
0: जी तो
1: कभी आए ना श्रीनगर कंगन में यहाँ?
0: पक्का जब आएंगे तो जरूर आएंगे, क्योंकि कश्मीर की वादियों में एक अलग ही सुकून मिलता है, एक
1: हाँ,
0: खूबसूरत।
1: दिल का अलग अलग ही सुकून मिलता
0: हाँ, हर मंजर जैसे मोहब्बत का पैगाम देता हो,
1: है। हाँ, सही
0: बहुत ही
1: बात।
0: खूबसूरत। चलिए फिर, आपने आज कॉल किया हमारे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: शुक्रिया।
0: शुक्रिया।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत है
1: जी। मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: प्रेम सिंह जी कैसे हैं? नमस्कार
1: जी। नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग हमेशा हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, तभी तो हमारा आज का ये हेलो फरमाइश कार्यक्रम खास बन चुका है सभी के लिए।
1: जी बिल्कुल, हेलो फरमाइश प्रोग्राम हमारे लिए खास होता है क्योंकि इसमें हर राज्य के श्रोता फोन लगाते हैं
0: जी,
1: अपनी बातचीत रखते हैं और अपनी पसंद का गाना सुनते हैं अपनी आवाज के साथ में, तो और भी अच्छा लगता है।
0: सही कहा आपने
1: जी। बताए ले में अभी मौसम कैसा है?
0: ले में बिल्कुल मौसम सुहाना है, बहुत खूबसूरत मौसम हो चुका है। आप बताइए वहाँ का मौसम कैसा है?
1: यहाँ पे तो गर्मी है काफी जी, और कल परसों मतलब काफी तेज हवाएं भी चली थी, धूल भरी आंधी थी जी। अभी तो मौसम थोड़ा खराब हो चुका था लेकिन अभी थोड़ा ठीक है आज से।
0: और प्रेम सिंह जी,
1: जी मैं बताऊं दीदी आपको, अभी हमारे यहाँ पे आम और केरिया काफी मात्रा में मिल रही है जी। कच्ची केरिया की चटनी बनाई जाती है, सब्जी भी बनाई जाती है, और जब पके हुए आम मिलते हैं ना बाजार में उससे जूस भी बना के लोग सेवन करते हैं।
0: आपने आम की बात की तो गर्मियों का असली मजा तो आम के बिना अधूरा से लगता है ना
1: जी। कहा जाता है ना गर्मियों का राजा आम ही होता है।
0: हाँ सही कहा आपने, और रसीला आम और सुहाना मौसम, क्या बात है
1: जी। बिल्कुल
0: जी। तो प्रेम सिंह जी बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: जी दीदी बताना चाहूंगा, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी और गाने के लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से। अभी काफी हवाएं तेज चल रही है ना हमारे यहाँ पे, तो मुझे ये गाना याद आया।
0: शादियों का सीजन भी है ना?
1: जी बिल्कुल, शादियों का सीजन भी चल रहा है और अभी मतलब आपको

0: हूँ, आना जाना भी काफी हो रहा है लोगों का।
1: मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि बाहर से लोग घूमने भी आते हैं ना?
0: हाँ जी बिल्कुल, घूमने का जो होता है ना वो तो सिलसिला महाकालेश्वर बाबा मंदिर उज्जैन में हमेशा चलता रहता है।
1: और आपने बहुत खूबसूरत गीत आपने फरमाइश किया है, वो भी मुझसे शादी करोगी फिल्म से। शादियों का खूबसूरत सीजन जो है शुरू हो चुका है, तो हर तरफ खुशियां, ढोल, मेहंदी की रौनक नजर आ रही है, इसलिए शायद आपने फरमाइश किया है। और साथ ही आपने ये भी कहा कि वहाँ तेज हवा चल रही है ना?
0: जी हाँ, तेज हवा के साथ में लाल दुपट्टा जब उड़ता है ना किसी का, तो काफी अच्छा लगता है।
1: हम जानना चाहते हैं प्रेम सिंह जी, आप किसको डेडिकेट कर रहे हैं? किसी खास को तो जरूर कर रहे हैं।
0: बताऊँ आपको, ऐसा तो कुछ खास नहीं, बट सुनने में गाना बड़ा अच्छा लगता है। जब बताऊँ आपको, किसी अपने का ही उड़ेगा तभी अच्छा लगेगा।
1: और लाल दुपट्टा एक बहुत ही पॉपुलर ये स्टेंजा है हर एक शादियों की सॉन्ग्स में, है ना?
0: जी बिल्कुल।
1: चलिए जी, बताइए फिर अपने दोस्तों का नाम आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, आकाशवाणी शिलोंग के शैली जी है हमारे दोस्त, उसके बाद में आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी, पूनम जी आगे कानपुर से
1: जी,
0: और हमारे दोस्त है ग्रुप के भगवान सिंह परमार, लोकेंद्र वर्मा, तुकाराम यादव, केसरी सिंह राजपूत, ये सभी लोग कार्यक्रम सुनते हैं, सारून नूर अंसारी, और मतलब आपको पता है ना ऐसे हर राज्य के श्रोता है हमारे जो लगभग सभी कार्यक्रम सुनते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं।
1: जी प्रेम सिंह जी, जब भी आपसे बात होती है मैंने ये नोटिस किया, हमेशा एक मुस्कान के साथ प्यारी सी आवाज में आप बात करते हैं। आपकी प्यारी आवाज ने हमारे रेडियो प्रोग्राम को और भी खास बना दिया है, मैं सच बोल रही हूँ। और देश के अलग अलग स्टेट से जुड़ते हैं सभी कॉलर्स हमारे इस कार्यक्रम में।
0: आपको बताया ना, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ ना, बात करता हूँ बिना बात करे भी, मतलब हमेशा नेगेटिव सोच को नहीं रखता हूँ, पॉजिटिव सोच को ही साथ में रखता हूँ।
1: जी बहुत
0: ही बढ़िया, खुशियों का राज बना रहता है।
1: क्या बात है, ये तो आपने सही कहा
0: जी, बस एक दूसरे से प्यार का संबंध बनाए रखे तभी मतलब जीवन में खुशियाँ आती रहेगी।
1: और आप हमेशा हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में, और एक खूबसूरत महफिल सजा देती है जब भी आप कॉल करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी,
1: आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि देश के हर कोने से हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: जी थैंक यू सो मच, मुझे भी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए सुनाते हैं आपके लिए मुझसे शादी करोगे फिल्म से ये गीत, आपके लिए और आपके साथियों के लिए।
0: जी थैंक यू सो मच,
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत है सर। अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं गुजरात से धीरज रबारी बात कर रहा हूँ।
0: गुजरात से
1: धीरज रबारी,
0: केम छो जी?
1: मजामा, आप केम छो?
0: मैं भी मजामा, बिल्कुल मजे में हूँ मैं भी।
1: एक मीठी भाषा होती है हर प्रदेश की
0: जी,
1: और इस मीठी भाषा से सब एक मिलजुल के रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे हम लेह में है तो वहाँ की जो लोकल
0: जी लद्दाखी लैंग्वेज जी,
1: हाँ, तो उसमें भी अगर बाहरी कोई आदमी आए और वो एक महीना, दो महीना, चार महीना रहे तो वो भी वो भाषा सीख जाए और फिर वो अपनी भाषा बोल के वही भाषा बोलने लगे, बहुत अच्छा लगता है।
0: हाँ
1: जी
0: जी, जब भी हम भाषा की बात करते हैं ना, एक खूबसूरत है भाषा, सिर्फ शब्दों का जरिया नहीं है बल्कि हमारी कल्चर का, हमारी पहचान का एक खूबसूरत हिस्सा होती है। और हर लैंग्वेज अपने अंदर एक अलग ही मिठास और एक अलग ही कहानी समेटी होती है।
1: बिल्कुल, और ये भाषा के जरिए अपनी जो अपनी बोली होती है, अपनी जो बातचीत होती है उसके जरिए से बहुत यानी संबंध भी गहरे होते हैं और एक मिठास भी रहती है और एक दूसरे को दोबारा मिलने का एक मन में ऐसा रहता है कि दोबारा हम ये भाई को मिले, ये बहन को मिले, तो एक बातचीत में अच्छी सी एक सकारात्मक बात जाती है। दीदी,
0: गुजराती में कुछ फिर बताइए अपने लैंग्वेज में कुछ।
1: वैसे देखा जाए तो हम आपको अगर यहाँ आप बता रहे हैं हमारे यहाँ तो हम ऐसे बोलते हैं आओ यानी वेलकम यानी आइए, और फिर यहाँ से मेहमान जाता है यानी कोई भी अतिथि जाता है तो वापिस हम बोलते हैं आवजू, दोबारा आना। हमारे यहाँ नहीं, सब भारतीयों का एक अलग अलग एक हृदय सबर का जो वाक्य होता है तो उसमें से बहुत मीठा से कि आवजू यानी आप दोबारा भी आना है
0: जी, और आपका हार्दिक स्वागत है को अपनू हार्दिक स्वागत छे, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, अगर मैं गलत ना हूँ।
1: और हम ऐसा ही बोलते हैं कि आप हमारे यहाँ तो आपका तहे दिल से यहाँ हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, तो उसको गुजराती में बोलते भले पधार्या, भले पधार्या यानी पधार्या यानी वो आना
0: जी,
1: यानी आवागमन यानी जो बोलते हैं कि आयात और निकास, तो वही कई शब्द है। और आपने कोई अच्छा कार्य किया है तो हम बोलते हैं खूब खूब अभिनंदन आपने, यानी बहुत अच्छा किया कार्य, तो हम ऐसे बोलते हैं खूब खूब अभिनंदन आपने इस अच्छे कार्य के लिए।
0: जी बहुत ही खूबसूरत, और मैं ये कहूंगी कि जुबान चाहे अलग हो, लैंग्वेज चाहे अलग हो, लेकिन एहसास वही रहती है ना। अगर गाना सुनते हैं तो गाने को तो हम बोलते हैं, म्यूजिक इज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसीलिए तो लोग दिल से कनेक्ट होते हैं।
1: बिल्कुल, और यहाँ का खाने का जो मिठास है वो मैं आपको बताऊँ तो बाजरी का रोटला और कड़ी बोलते हैं, जो यानी छाछ होती है, जो हमारा दूध यानी दूध के बाद जो बनाते हैं दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, तो उसमें छाछ भी निकलते, तो छाछ के जरिए से अगर चने का लोट है, बेसन का लोट है, उसके जरिए से हम बाजरे का आटा है उसके जरिए से हम कड़ी बनाते हैं, अगर वो कड़ी और बाजरी का रोटला खाए तो वो कई बोलते हैं वो स्वादिष्ट जो मिठाई है से भी वो उसका स्वाद अनेरा होता है।
0: क्या बात, गुजरात की कल्चर की तरह वहाँ का खाना भी बहुत ही रंग बिरंगे और स्वादिष्ट होता है ना, ढोकला, थेपला, बहुत सारे
1: खमण है, बहुत अच्छी अच्छी वेरायटी है, लेकिन जो हमारे बहने खाना बनाती है गाँव में शहरों में तो वो मिठास तो अनेरी होती है। जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं उसको खाने के बाद अंगुली को चाटते हैं, इतना अच्छा,

0: क्या बात है।
1: बनाए
0: और
1: तो।
0: गुजराती खाने की खास बात यह है कि उसका मीठा और एक हल्का सा स्वाद होता है ना, जो हर किसी को पसंद आता है।
1: अब दोनों तरीका होता है, खाने की भी मिठास होती है, वो जो जो घर के जो हम रहते हैं वो उनकी भी वो मिठास होती है, तो
0: सही
1: दोनों तरफ से मिठास होती है, तो उसका क्या बोलते हैं वो एक अनेरा प्रसंग बन जाता है।
0: थे, मतलब आज तो हम बिल्कुल गुजरात के हर कोने में होकर आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी
1: जी
0: वजह
1: जी
0: से।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ की आतिथ्य सत्कार देखना जाए तो हमारा कच्छ प्रदेश है, हमारा बनासकांठा है, हमारा सौराष्ट्र है, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात, यानी उनको ये है कि हमारे घर भगवान आए, यानी जो बहन है भाई है कि हमारे घर आतिथ्य आया, अतिथि आया, अतिथि देवो भव, यानी वो मेहमान आता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, और इसके साथ जो बच्चे लोग होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो मनगंती जो चीज है खाने की वो भी मिल जाती है।
0: क्या बात है।
1: जी मेरा गांव का नाम डेर और तहसील जिला पाटन, जहाँ रानी की वाह है, वहाँ का अगर देखा जाए तो जो पाटीगढ़ पटोला बोलते हैं, उसकी साड़ी बोलते हैं, तो उसकी साड़ी की कीमत देखा जाए तो 40,000 से 1,00,000 तक की होती है, लेकिन उसका जो अंदर का काम होता है, जो जरी काम होता है, वो बेनमून होता है, वो बहनों के लिए उसको पटोला बोलते हैं, उसकी साड़ी होती है। अगर कहीं आप अगर गुजरात में घूमने आए तो पाटन जाना, और अगर किसी को साड़ी लेना है तो पटोले वाली साड़ी लेना है, क्योंकि भारत का जग विख्यात वो बेनमून यानी स्त्रियों के लिए जो पटोला होता है साड़ी, वो हमारे पाटन में मिलता है।
0: धीरज जी बहुत अच्छा लगा। चलिए अब बारी है आपकी फरमाइश की, तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं धीरज जी।
1: दिल हूँ करे उदय सिंह का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में।
0: जी
1: कई गाने ऐसे वो कम बजते हैं लेकिन वो गाने सुनने में और मजा आता है, और आकाशवाणी लेह में तो कभी कभार हमारा नंबर लग जाता है तो और भी मजा आता है, क्योंकि यहाँ जुड़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: क्या बात है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि देश के हर एक कोने से आप लोग हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, अपने अपने इलाकों के बारे में आप लोग को बिल्कुल एक विस्तार से बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और आपके लिए
1: जी।
0: और आपके
1: और
0: साथियों
1: दूसरी
0: के
1: बात,
0: लिए
1: आपको एक मैं आमंत्रण न्योता भी देता हूँ, मैं रहता हूँ अहमदाबाद में, और अगर आपको समय मिले तो हमारे यहाँ पाटन में जरूर आना। वहाँ एक तीन चीजें है, एक पटोला है, फिर वहाँ रानी की वाव है जो आपको पता होगा, क्योंकि वो तो एक
0: जी
1: हेरिटेज में स्थान मिला है
0: जी
1: स्थापत्य कला में, और हमारे जो चलन की 100 रुपये की नोट है उसमें चित्रकरण भी है, वो भी ये देखने आनेगा। और हमारे गुजरात में अगर मैं अहमदाबाद में रहता हूँ तो वहाँ भी बहुत यानी देखने वाले चीजें हैं, जैसे मान लो के सीधी सैयद की जाली है, जो हमारे साबरमती का रिवर फ्रंट है, और कई जगह है, गांधी जी का आश्रम है, तो बहुत अच्छी जगह है, अगर समय मिले तो जरूर आना, हमारा न्योता है।
0: आपने इतने प्यार से गुजरात बुलाया है ना, हम जरूर आएंगे। तो चलिए
1: जरूर
0: सुनवाते
1: आना,
0: हैं लता
1: और
0: मंगेशकर
1: अगर
0: जी की
1: किसी
0: आवाज
1: को,
0: में ये
1: अगर
0: गीत।
1: हमारे रेडियो श्रोताओं को हमारा नंबर पूछे तो हमारा कोई भी रेडियो श्रोता मेरा नंबर देगा, और आप जरूर आना, हमारा एक आप हो या ले परिवार के कोई भी सदस्य हो जरूर आना, हमारा एक आमंत्रण है।
0: तो बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी, आपने हमें इनवाइट भी किया, साथ ही साथ गुजरात का पूरा बता दिया आपने, और ये खूबसूरत गाना आपके लिए और आपके साथियों के लिए हम सुना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका दिन मंगलमय रहे, धन्यवाद, नमस्कार।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो
0: हेलो फरमाइश,
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश में स्वागत है। आप अपना नाम बताइए सर, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल, जलंधर पंजाब से।
0: जी, जलंधर पंजाब से। करणवीर जी, आप हमेशा हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम लोग हैं जो पंजाब से जुड़ते हैं, बाकी सारे स्टेट से ज्यादातर जुड़ते हैं। जी
1: हाँ, उधर से लोकेंद्र वर्मा जी आते रहते हैं, बाकी और आते रहते हैं, गंगाधर जी साहब वगैरह आते रहते हैं। हाँ
0: जी,
1: जी,
0: बताइए फिर
1: और
0: करणवीर सिंह जी, कैसे हैं वहाँ का मौसम?
1: बिल्कुल मौसम मैडम अभी तो ठीक है, पहले तो बहुत गर्मी थी, अभी 2 दिन हुए कुछ थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाती है, तो अभी भी ठंडी हवा चल रही है, जैसे आपके बर्फ पड़ रही है तो हमारे कुछ ना कुछ तो इधर ठंडा हो ही जाता है।
0: सही कहा आपने। और पंजाब जो है बहुत खूबसूरत इलाका है पंजाब, मेहमान नवाजी के लिए आप लोग जिंदा दिल्ली, और बहुत रिच
1: बिल्कुल जी,
0: कल्चर है
1: मेहमान नवाजी के लिए तो ऐसा है
0: आपके।
1: कि हमारे कोई मेहमान आ जाए तो हमारे पास कुछ भी ना हो ना, तो आस पड़ोस से लेकर भी उनकी ऐसी आओ भगत करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि इसके पास कुछ नहीं था।
0: सही कहा।
1: बाकी आपने देखा होगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम में होते हैं कोई लोग, तो हमारे जो पंजाब के सरदार लोग हैं वो सबसे पहले उधर जाते हैं उनकी राहत देने के लिए, कहीं
0: ये
1: कुछ आपदा आ जाती है तो उधर हमारे पंजाब वाले लोग पीछे नहीं हटते, सबसे आगे जाते हैं।
0: जी बहुत अच्छा लगा करणवीर सिंह जी, आपसे
1: तो
0: बात हो रही है हमारी।
1: आपके जहाँ मौसम कैसा है अभी?
0: बिल्कुल सुहाना हो चुका है, ना गर्मी ज्यादा है ना ठंड है।
1: अच्छा अच्छा
0: जी,
1: बहुत बढ़िया है फिर
0: और
1: तो।
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: गीत मैडम आज सुना दीजिए, फिल्म का नाम है पत्थर के सनम और गीत के बोल है, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना।
0: तो बहुत खूबसूरत गीत आपने फरमाइश किया है, पुराने
1: हाँ
0: गानों का क्या बात मतलब है
1: ऐसा है
0: ना।
1: ना मैडम, हम वैसे भी हम तो पुराने ही हो चुके हैं, हम तो 69 ईयर की ओल्ड हो चली है हमारी, तो इसलिए हमें पुराने जो गीत है ना, रफी साहब के हुए, किशोर जी के हुए और मुकेश जी के हुए, ये मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। सभी उमदा कलाकार आया, लता मंगेशकर जी से उनकी, बाकी सारे ऐसे कला बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं, उनके गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं।
0: जी, और पुराने हिंदी गाने के ना एक अलग ही सुकून है, एक अलग ही मेलोडी है, क्या पोइट्री है, इमोशंस बहुत गहरे होते हैं, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ऐसा है ना, अभी तो जैसे 2G का जमाना चल गया है, IG का जमाना हो गया है, तो इसमें तो फिर कई कुछ मिक्स मुक्स कर देते हैं
0: सही।
1: गानों में, धूम धड़का ज्यादा होता है, गाने कुछ समझ कम लगती है, लेकिन पहले जमाने के जो गीत होते थे ना
0: जी,
1: उनकी एक
0: यादों
1: एक
0: और
1: गान
0: एहसासों
1: पूरी।
0: का एक खजाना ही होते थे, है ना।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो ऐसा लगता था जैसे कोई स्टोरी सुना रहा होता ना, गाने
0: हाँ
1: गाने भी
0: जी,
1: बजते हैं ना, तो ऐसा लगता है जिसमें उसमें कोई स्टोरी सुना रहा है।
0: सही कहा
1: तो
0: आपने।
1: आज के जमाने में जो गाने चलते हैं तो म्यूजिक ही सुनता है, उसकी बंदे की आवाज कम सुनती है, म्यूजिक ज्यादा सुनता है।
0: जी, वैसे तो हर गाना बहुत खूबसूरत है,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल
0: हर
1: जी,
0: अपनी
1: हाँ जी, हाँ
0: फेस
1: जी,
0: के गाना जो हैं सारे लोग सुनते हैं, लेकिन जब हम एवरग्रीन मेलोडीज गाने की बात करते हैं तो एक अलग ही सुकून, अलग ही माहौल बन जाते हैं ना।
1: बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया माहौल बन जाता है फिर, पुरानी यादें सारी ताजी हो जाती है।
0: जी, तो आपने गीत फरमाइश किया है पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा
1: खुदा
0: जाना।
1: जाना सही है।
0: क्या

0: बात है जी। करमवीर सिंह जी, फिर आपके साथ कौन कौन है इस वक्त?
1: मेरे साथ है जी लुकेंद्र वर्मा जी है, गंगाधर सावंकर जी है, तुकाराम यादव जी है, राजेश्वर सोनू जी है, और हमारे पास सतीश गुलियानी जी है, और जगदीश राय गर्ग जी है, और सभी हेलो पर मैच श्रोता रेडियो एकता ग्रुप के सुनने वालों को डेलीगेट रहेगा, और मेरे दो खास दोस्त हैं जो त्रिपुरा से अविनाश जी और एमपी से भगवान सिंह जी, इनको भी ये डेलीगेट रहेगा।
0: करणवीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, पंजाब से आपने कॉल किया है इसके लिए दिल से धन्यवाद करते हैं, और पंजाब की मिट्टी की खुशबू और वहाँ के लोगों का प्यार और जिंदा दिल्ली हमेशा दिल को छू जाती है, और जिस तरीके से आप हमारे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में जुड़कर बातें रखते हैं अपनी आवाज के माध्यम से, बहुत अच्छा लगता है हमें। चलिए पत्थर के सनम फिल्म से ये गीत आपके लिए सुनाते हैं और आपके सभी दोस्तों के लिए।
1: मेहरबानी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने भी बहुत अच्छी बात की है, हमारा भी आप दिल छू लेते हैं जब आप इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हो, तो
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद,
0: शुक्रिया जी।

0: ngaji akashwani lene junjiktangin phido chutsu tukcharuk kasata akashwani dilli ne hindi tang angrezi
1: na akashwani samachar ke sath main lovleen nigam भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वितरी कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसीके पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरला में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में सम्पन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक

0: और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों, राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजय राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Suvendra Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
2: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers from the BJP rule states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has been seeking support from the CPI, CPM and the VCK. Congress has already lent support with 5 MLAs. After much discussion today, the CPI and CPM, having 2 MLAs each, has offered unconditional support to TVK to form the government. VCK is likely to announce its decision after the meeting this evening or tomorrow. In another political development, the state BJP president Nayanar Nagendran has clearly said that the party gracefully accepted the election results

Dagsangi chirangi gamyulpi skatlun degrim sanazats degrim pulkan inpin konchuktashi yang degrim ekotiksatkan sunamanchuk medium wave 284.9 meters yani 1053 kilohertz aur fm 101 megahertz par hum akashvani le se bol rahe hain. शाम के 6:40 हो रहे हैं. लीजिए प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम.

जय हिंद फौजी भाइयों, फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कटी पतंग फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आर डी बर्मन।

आइए अब सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप कभी कभी फिल्म से गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में, गीतकार साहिर और संगीतकार खयाम। आइए अब सुनते हैं।

अभी आप कैरावन फिल्म से गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, गीतकार मजरू और संगीतकार आरडी बर्मन। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं अजनबी फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आरडी बर्मन।

अभी आप आंधी फिल्म से गीत सुन रहे थे। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीतकार गुलजार और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद।

0: करना, हमारा काम है काउंसलिंग करना, जो हमारे सेंटर्स चल रहे हैं हॉस्पिटल्स में वहाँ पे ट्रीट करना, वहाँ पे काउंसलिंग करना, वहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट करना, उनको इस वबा से बचाना, उनको वापस लाना है ताकि वो आगे बढ़े अपनी लाइफ में। जो बिदत है ड्रग्स की, इसको हम निकाल पाए यहाँ से, हमारी कोशिश यही है, लेकिन जितना हम सारे मिलजुल के कर सकते हैं इस वबा को निकाल सकते हैं यहाँ, इसमें जो भी करे काम मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूँगी।
1: मनशात के खिलाफ जारी कार्रवाई के तहत पुलिस ने अनंतनाग में डूनीपुरा संगम के रहने वाले बशीर अहमद मीर नामी एक शख्स के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इस कार्रवाई में मजकूरा ड्रग स्मगलर की 6.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद जब्त की गई है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत पुलिस ने कुलगाम में महकमे माल के हुक्काम के ताउन से कुंड इलाके में 5 कनाल के रुकबे पर फैली काचराई को बाजियाब किया है। ये जमीन जिसकी मालियत 60 लाख रुपए बताई जाती है, एनडीपीएस एक्ट के तहत मुलजिम करार दिए गए 2 ड्रग स्मगलरों के कब्जे में थी। मनशात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने बारामूला जिले के फैरोजपुरा टंगमर्ग इलाके में बदनाम जमाना ड्रग स्मगलर इम्तियाज अहमद मीर की एक दुकान सर्ब मुहर कर दी। गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आउटसोर्स किया गया नॉर्थ विंड कैफे सील किया। बताया जाता है कि ये कैफे एनडीपीएस के एक मामले में मुलजिम यासीन खांडे के नाम पर लीज किया गया था। पुलिस ने अनंतनाग के खटपुरा नौगांव में अब्दुलरहमान राथर नामी एक शख्स की जमीन पर काश्त की गई भंग की फसल को तबाह कर दिया। जम्मू सूबे के कुठवा जिले में रंजा नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अहतमाम से हंदवाड़ा में इस अभियान के तहत कई बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। उधमपुर में पुलिस ने मोहम्मद फारूक, स्वयं शर्मा, विशाल जमवाल, वंश जमवाल और एक खातून ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई। रियासी जिले में पुलिस ने कटरा में एक कार्रवाई के दौरान विक्की कुमार नामी एक शख्स से नशीली अद्वियात के 300 कैप्सूल बरामद किए। रियासी पुलिस ने पुष्पंदर सिंह नामी एक और ड्रग स्मगलर की गिरफ्तारी अमल में लाई। सांबा जिले के बड़ी ब्रह्मणा इलाके में मोनू कुमार नामी ड्रग स्मगलर को हिरासत में लिया गया। जिले के विजयपुर इलाके में मनशात मुखारे बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। राजौरी पुलिस के अहतमाम से जिले के कई मकामात पर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी अवामी राबता मुहिम के तहत आज श्रीनगर में मुख्तलिफ अवामी वफूद और नुमाइंदों के साथ मुलाकात की और उनके साथ जम्मू कश्मीर में अवामी बहबूद से मुतलिक सरकार की मुख्तलिफ तरक्याती सरगर्मियों के बारे में तबादले ख्याल किया। मुलाकात करने वालों में हल्के इंतखाब जड़ीबल और बानिहाल के मेंबरान असम्बली तनवीर सादिक और सजाद शाहीन के अलावा साबिक वजीर जावेद मुस्तफा मीर, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम और माहिर तालीम जी अनवार शामिल थे। सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर सकीना आयतू ने आज अफसरान की एक मीटिंग में तालीम, सेहत और समाजी बहबूद महकमों की जानब से अमलाए जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर मौसूफा ने देही और दूरदराज इलाकों में तालीमी मंजरनामे को जदीदत से हमकिनार कराने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर की मुतवाजन तरक्की के लिए वादाबंद है। आकाशवाणी ने आज अपने कयाम के 90 वर्ष मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी दिल्ली में एक मैराथन का एहतमाम किया, जिसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन से लोगों तक चुस्त रहने की तहरीक का पैगाम पहुंचेगा।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशंस हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था कि आकाशवाणी से जैसे आपका लगाव पिछले 9 दशकों से बना हुआ है, आने वाले समय में भी वैसे ही बना रहे।
1: आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुल्क भर में आकाशवाणी के 232 मराकज पर मुनक्किद किए जाएंगे।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा और ये उत्सव है। हम देश की सेवा में जो आकाशवाणी का योगदान रहा है, उस योगदान को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
1: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर बैंक ने गुज़श्ता माली साल में रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है, जबकि बैंक के असासों में भी मजीद बेहतरी आई है। इस बारे में बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO अमिताभ चटर्जी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ एक खसूसी बातचीत के दौरान कहा,
5: पिछले साल हमने जो मुश्किलात देखी यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में, तो वो उसके मद्देनजर अगर आप हमारे प्रॉफिट

0: को या हमारे बिजनेस ग्रोथ को देखते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही रिमार्केबल है. आप फ्लड्स को ले लें, जो हाईवे बंद था, इन सभी चीजों की वजह से बिजनेस काफी अफेक्टेड था. तो हमने इसी वजह से कुछ अपने स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाए थे. हमने एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस किया, एमएसएमई पे फोकस किया लास्ट क्वार्टर में, और इसके साथ में एक बिजनेस मिक्स हमने किया रेस्ट ऑफ इंडिया के जो हमारे ब्रांचेस हैं. तो इसकी वजह से हमारा बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छा रहा, इंडस्ट्री से बेटर डिपॉजिट ग्रोथ भी रहा, इंडस्ट्री से बेटर एडवांसेस ग्रोथ भी रहा, और करीब करीब इंडस्ट्री से मैचिंग हमारा कासा का भी ग्रोथ रहा. तो इन सभी फैक्टर्स को अगर हम एक साथ देखें तो ये साल रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुआ है इन स्पाइट ऑफ इतना सारा डिफिकल्टीज रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में.
1: शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा में आज से थर्नोस्टिक्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन ए वे फॉरवर्ड के मौजू पर दो रोजा सीएमई का आगाज हुआ. इस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम के दौरान माहरीन मुख्तलिफ अमराज की तशखीस और इलाज में न्यूक्लियर मेडिसिन की अहमियत उजागर करेंगे. इस बारे में सिकिम्स के न्यूक्लियर मेडिसिन शोबे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर अहमद राथर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया.
2: इसका मकसद ये है कि जो हम इस वक्त कुछ टेस्ट या कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ थेरेपी जो हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में करने का इरादा है, अपने आप को हम एड्रेस कर लें कि इसका फायदा क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है. इसलिए हमने मुल्क के बेशतर बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट से लाइक एम्स, पीजीआई, जसलोक हॉस्पिटल, आरएमसी से एक्सपर्ट्स को लाया जिनको अब ये एक्सपीरियंस थी कि ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और ये स्कैनिंग कैसे करते हैं. हमने क्योंकि हमारा इरादा है आगे जाके हम भी ये कर लेंगे, तो हमने चाहा कि इस पे एक सीएमई किया जाए ताकि अपने आप को एब्रेस्ट किया जाए.
1: साहित्य एकेडमी की तरफ से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर में कश्मीर की मारूफ शायरा हबा खातून से मुतालिक एक सेमिनार मुनक्किद किया गया. सेमिनार में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान द्राबी ने मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की. अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि हबा खातून ने अपनी शायरी में सिर्फ अपने दिल की ही बात नहीं कही है बल्कि उन्होंने वादी के खवातीन तबके की कुव्वत का भी वाज ऐलान किया है.
3: हबा खातून की हयात जिंदगी पे आज सब बात कर रहे हैं. ये बड़ी बात है कि हम अपने जो हमारे कश्मीरी जुबान के अदीब हैं उनको याद करें और जो उन्होंने रोल अदा किया है, खासकर निस्वानियत जो आवाज थी हबा खातून की, वो आज नए जनरेशन को बोली जाए, बताई जाए, उनके सिलेबस में शामिल हो ताकि हम ये लेगेसी आगे बढ़ाएं. तभी तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को अपने जो रूट्स हैं, जैसे खासकर हमारी हबा खातून, लला आरिफ, ये हमारे ऐसे लीजेंड हैं, अगर हमारी आज की जनरेशन इससे नावाकिफ रही तो बहुत नुकसान होगा.
1: अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर गजारा अजहर ने कहा,
4: हमारा ये मकसद था कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनको पता चल जाए कि ये पामपुर की सरजमीन जो है ये कोई आम सरजमीन नहीं है. यहाँ पर सबसे जो कदावर शायरा पैदा हुई है हबा खातून, तो वो इसी सरजमीन की पैदावार. और मैं चाहूंगी कि जो हमारे यहाँ पर डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी मैम आई है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, इंतजा करूंगी कि इस कॉलेज को सी हबा खातून सीट बनाए ताकि यहाँ पर लोग दूर दूर से आए और हबा खातून पर रिसर्च.
1: सेमिनार में नामवर कलमकार मोहम्मद यूसुफ टेंग, प्रोफेसर मोहम्मद जमा आजुर्दा और अदबी मरकज कमराज के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने भी शिरकत की. बांडीपुरा जिले के हाजिन इलाके में आज तीन नौजवान घर के आब होने के नतीजे में जहां भाग हो गए. हमारे नुमाइंदे आदिल इस्माइल ने खबर दी है कि दरियाए जहलम के किनारे पर टेंट धोने के दौरान एक नौजवान अपना तवाजन खो बैठा, जिसको बचाने के लिए दीगर दो नौजवान दरिया में कूद पड़े. घर के आब होने हुए इन तीन नौजवानों की शिनाख्त 22 साल सुहेल अहमद डार, 18 साल आदिल अहमद डार और समीर अहमद डार के बतौर हुई है. लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस वाक्य पर सख्त सदमे और अफसोस का इजहार किया है. अपने एक ताजियती पैगाम में उन्होंने सोगवार कुंभों के साथ जाती हमदर्दी का इजहार किया है. वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हाजन में पेश आए इस दिलदोज सानहे पर सख्त अफसोस का इजहार किया है. उन्होंने इस वाक्य को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए सोगवार कुंभों के साथ ताजियत की है. एमएलए सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने भी हाजन में तीन नौजवानों के घर काब होने पर अफसोस का इजहार किया है. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी हाजन में पेश आए वाक्य पर अफसोस का इजहार करते हुए गमजदा कुंभों के साथ हमदर्दी जाहिर की है. आज रेडक्रॉस का आलमी दिन है. ये दिन इंसानियत, गैर जानबदारी, रजाकाराना खिदमात, यकजहती, आफाकियत और हमदर्दी जैसे अकदार की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए मनाया जाता है.

0: आगाही कैंप साइक्लोन, सैलाब या कोविड-19 जैसी वबा से लड़ने के लिए अपनी खिदमात पेश करने में रेड क्रॉस का अहम रोल है और रहेगा। इस अजीम तंजीम को अपना अजीम मिशन चलाने में खासी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर अवकात पर इसके कारकुन मुसल्ले तनाजात के क्रॉस फायर में फंस जाते हैं। म्यांमार, जनूबी सूडान, सोमालिया के अलावा और कई इलाके जात जो कि मुसल्ले जदोजहद से मुतासिर हैं और जहां पर लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है, मैं अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं और आज का दिन हमें ये मौका फराहम करता है कि रेड क्रॉस रजाकारों और अमले की तरफ से दिखाई जा रही हमदर्दी, यकजहती, गैर जानिबदारी और इंसानी खिदमात को उजागर करें, इसको खराज तहसीन पेश करें। यहाँ पर हमें ये जरूर कहना है कि रेड क्रॉस की तहरीक 7 बुनियादी उसूलों पर कायम है। ये उसूल है इंसानियत, गैर जानिबदारी, आजादी, रजाकाराना खिदमत, इतिहाद और आफाकियत। इन उसूलों की वजह से ही ये तंजीम कौमियत, मजहब, नस्ल और सियासी अकीदत को एक तरफ रखकर अवाम और मुतासिरा लोगों की खिदमत करती है। तबसिरा खत्म हुआ, शब बख़ैर।
1: ngaji akashwani lene jwin jik tangin chani chu chot rgya charuk kasata junuguni fia dikrim sanajat dikrim phulkan dishkit spalzestang lobjang dolkar yang dikrim ekotik chat kan lobjang namgyal

0: nga je akashwani le ne jwin jik tang in sane chu chod gya tang skar ma jip chu janga charuk kasata akashwani dilli ne samachar sandhya news at 9 yang testing ne urdina nasul sanajat।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण

0: समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
1: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस आईयूएमएल वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवी के पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्य और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित

0: किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
2: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट था, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू के चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं

नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हासिल हो गई है, वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनुष्यात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मनुष्यात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर शुभेंदु अधिकारी मगरी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
0: कल सुबह सरकार की हलफबरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेरे इक़्तदार रियासतों से बहुत से वजीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि दराजाती बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सी उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई, सीपीआईएम, बीसीके और आईयूएमएल ने

मोदी सोमनाथ के प्रभास पतन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल के मुजस्समे तक 1 किलोमीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर में कुंभ अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार के रोज नई दिल्ली में मुमकिना सैलाब और गर्मी की लहर की सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क की तैयारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। यह आला सतही जायजा फाल हुकुमरानी, शहरियों पर मरकूज कुदरती आफात का बंदोबस्त और कुदरती आफात से मुकाबला करने वाले भारत की तामीर के तई हुकूमत के मुसम्मम अहद की अक्कासी करता है। मीटिंग के दौरान जनाब शाह मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारी, पेशगी वार्निंग निजाम, वसाइल की फरोख और बैन एजेंसी तालमेल का जायजा लेंगे ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जान जाया ना हो और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुंचे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने इत्तला दी है कि एयर इंडिया की परवाज AL-171 के अलमनाक हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है और तवक्को है कि उसे 1 माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट सीजनिंग और फाइनेंसिंग समिट के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तैयारा हादसे की तहकीकाती एजेंसी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए छानबीन किए जा रहे मामलों से मुतालिक 10 से 15 जेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए कम से कम एक खसूसी अदालत कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें 1 माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अस्खुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी की कि इन खसूसी अदालतों को कोई और केस नहीं सौंपा जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियाद पर की जाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलों के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नज़र एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। जराए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलों से मुतालिक बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्विलांस प्रोग्राम, सेहत की आलमी तंजीम WHO और सेहत के दीगर बैन अलाक़वामी सेहत हुकाम के तावुन से किया जा रहा है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में जमीनी वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डिजिटल इंडिया जमीनों के रिकॉर्ड की जदीदकारी के प्रोग्राम 3.0 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए जनाब चौहान ने कहा कि जदीदकारी की काविशों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन से मुतालिक खिदमात को शफाफ, मौसर और रुकावटों से पाक बनाकर शहरियों के साथ साथ महसूलाती हुकाम के लिए सहूलत का बाइस हों। उन्होंने वाजे किया कि मुजवजा अराजी के पैमाइश के इकदाम क़िता अराजी की फौरी और दुरुस्त कदर की तशखीस में सहूलत फराहम करेंगे जिससे बैंकों को कर्जों की मंजूरी के अवामिल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को महाराष्ट्र के झोंपड़पट्टी वाले इलाकों की बेहतरी, सफाई और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की जमीनी मौसरियत का जायजा लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी करते हुए हाई कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई के दौरान यह फैसला किया गया। जस्टिस GS कुलकर्णी और अद्वे सेचना पर मुश्तमिल बेंच ने मुंबई में झोपड़पट्टी की बहाली और शहरी मनसूबाबंदी की इंतहाई नाकिस पेशरफ्त पर तनकीद की और कहा कि यह कानून 5 दहाइयों से ज्यादा नाफिजुल अमल है। खवातीन के कौमी कमीशन NCW ने संगीन जंसी जराइम के मामलों में तेज रफ्तार अदालती कार्रवाई, सख्त निगरानी और पैरोल पर पाबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। कमीशन ने अपने एक बयान में खवातीन और बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमीन के लिए मौजूदा पैरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत की सिमरनजीत कौर आज शंघाई में खेले गए तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व इंफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपाई हरीफ फेंगयू जू को सीधे सेटों में 0-6 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ 1 जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की किम

0: कौन से होगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफबरदारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज टू में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ngaje akashwani lene juin jikain sane chu chot gudang skarma sumchu charuk kasata thiring chondol tang thopagune salkane junglurik sanachat